की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रिया लाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुंह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई

स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, सभी समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम, शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूड मती, जब समय चला जाएगा मुख में दाने चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है। भज गोविंदा।

और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है, ताते उपजत है उर दाहू। और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलो, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे? एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख।

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है कहां लग कहूं मूर्ता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है वृद्धावस्था आनी है और अधिक दुखदायी स्थिति के तन में और मन में बल और शक्ति रहती है। इंद्रिय निग्रह करना सरल है लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। हमें तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है भजन के मार्ग पर, देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सम्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है उस स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात में समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसीलिए आपको बीच बीच में कहमरण करा देता हूं कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया। वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू ना कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू ना कराही, किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाही। तो भाई देखते ही ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी। इसलिए काल चुरैया चुग रही, और स्वामी जी हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए की लाज निभाइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है माथे पर, ये हरि मंदिर है, गले की कंठी है, हाथ में जपकी माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

और यह रुचय मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन, छोड़ दीजिए, देख मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय नाम ना आवे तो भी संसार रुचता है, पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। कंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किसो, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है। राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के संभजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई। मन लागो अति झूठ सो तज सांच ही सुख मूल, मन लग गया इस झूठ में अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा?

फिर अंश हिली ना हिली। अरे नेक सीढ़ा कहीं तन में हो जाए सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए, भजन करिए, और आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं, और जो

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण, तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगाकर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: में खाना तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़ पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार।
3: पुलिस
2: पुलिस, दिस इज दिल, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।
4: अच्छा, आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में ना ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स बहुत कॉमन हो गए हैं।
5: नया नजरिया विद आरजे पलक।
4: नमस्कार, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बी के ज्योति जी एंड बी के प्रिया जी। वेलकम मैम। ज्योति जी, एक फेलियर मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, ऐसे नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कैसे डेवलप होते हैं और इनसे बाहर कैसे निकला जा सकता है?
6: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल के जो बच्चे हैं या हम देखते हैं बहुत सी यूथ भी है, वो इन सब चीज़ों से जूझ भी रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक बार का फेलियर होना नहीं है, उसके साथ साथ जो लोग उनको रिस्पॉन्स करते हैं। कई बार फेलियर होने पर, एक बार फेल हो गए तो लोग भी उनको डीमोटिवेट करने लग जाते हैं कि आप तो सफल हो ही नहीं सकते हो, आप क्यों कोशिश करते हो। कुछ लोग पहले से भी उनको रोक रहे होते हैं और वो कार्य करते हैं तो और निग्लेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति का अपने ऊपर से विश्वास उठने लग जाता है और वो खुद भी नेगेटिविटी में। और हम आजकल चारों तरफ देखते हैं, जो भी हमारे आसपास में चीज़ें मिल रही हैं या लोग मिल रहे हैं, वो नेगेटिव ही बातें करने वाले हैं।
4: बिल्कुल।
6: जैसे आप अगर किसी पेशेंट से कोई मिलने जा रहा है तो उसके पास जाकर के वहां पर उसको बल देने के बजाय कई लोग ऐसी बातें करते हैं, फलाने को ऐसी बीमारी हुई थी, वो उसकी डेथ हो गई, उसके घर में ऐसा हो गया, तो व्यक्ति को डरा देते हैं। आज किसी के पास मोटिवेट करने वाले शब्द नहीं है, इसीलिए आज जब कोई बच्चा फेलियर होता है या किसी भी कारण से किसी जगह पर रह जाता है तो आसपास लोगों का सपोर्ट अगर उसे नहीं मिलता है, आसपास के लोग भी उसको नेगेटिव ही रिएक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे उसका माइंड भी नेगेटिविटी में चला जाता है। वो खुद पर भी फेथ नहीं करता, लोग भी उसको वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका एक पैटर्न बन जाता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
4: बिल्कुल।
6: लेकिन अगर कहीं भी ऐसे व्यक्ति को अगर एक भी सपोर्ट एक ऐसा मिलता है और इसके लिए अगर व्यक्ति निकलना चाहता है तो सबसे पहले तो खुद खुद का सपोर्टर बनना है।
4: सही बात है
6: कि कोई भी असफलता हमें सदा के लिए असफलता नहीं दिलाती, उसके लिए हमें जरूरत है कि रोज अपने आप में कुछ क्वालिटीज, अपने आप में कुछ विश्वास रखें। आज कहीं भी देखें तो हम जैसे ब्रह्मा कुमारीज में है तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कई बार हम फेथ की बात करते हैं और हम पूछते हैं आपको भगवान पे फेथ है, तो लोग कहते हैं यस हमें भगवान पे फेथ है।
4: बिल्कुल।
6: आपको फैमिली पे फेथ है, यस हमें फैमिली पे फेथ है। लेकिन जैसे कहते हैं आपको अपने ऊपर फेथ है तो कहते हैं नहीं हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। माना कहीं ना कहीं खुद खुद से ही दोस्ती नहीं है, कोई नहीं है
4: जी।
6: तो जब हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो लोग भी हमें उसी नजरिए से देखते हैं और हमेशा ही पीछे करना चाहेंगे। अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे पहले के जमाने में लोग होते थे तो वो लोग अगर किसी को ये कहते कि तुम सफल नहीं हो सकते, लेकिन व्यक्ति के अंदर खुद की इतनी विल पावर होती थी, नहीं हम सफल होकर दिखाएंगे, वो उसी पैटर्न से चलते थे और बहुत सक्सेसफुल भी होते थे। और ये जितने भी हमने साइंटिस्ट देखे हैं, इनकी हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो यही हमें मिलता है कि उनको सबने निग्लेक्ट किया लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर से अपने आप को सफलता के शिखर पर लेकर गए। लेकिन आज का जो जनरेशन है या आज के जो लोगों की मेंटालिटी बन गई है, जिसमें हम सब भी शामिल हो जाते हैं कभी कभी, कि अक्सर हम यही सोचते हैं कि नहीं, फेलियर माना ही फेलियर, अब हम आगे सक्सेस नहीं हो सकते हैं, हमारे अंदर पावर नहीं है। और कहीं ना कहीं सच में ही उनकी इनर पावर बिल्कुल वीक हो चुकी है, क्योंकि कहीं पॉजिटिव बातें मिल ही नहीं रही है, कहीं कोई मोटिवेट कर ही नहीं रहा है।
4: बिल्कुल।

0: कहीं से उनको एप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, आज इसकी बहुत कमी हो गई है। इसी कारण से आज व्यक्ति के माइंड में जो है वो नेगेटिव पैटर्न बनता जा रहा है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, और वो एक बार फेलियर को भी अपने जीवन के फेलियर में शामिल कर लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव थॉट्स सिर्फ एक सोच नहीं, कभी कभी हमारी आदत भी बन जाते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सोशल मीडिया और कंपैरिजन ट्रैप किस तरह हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं। बने रहिए नया नजरिया के साथ।

0: लो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट है?
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

please.

0: जाके बीती रात रास्ता ना दिखे कोई आज पत्ती जला रात भगा पासा पलट दे बोर्ड उलट दे अरे उठ बाजी ले अपने हाथ टाइम जा रहा है भाई तो करे रीस्टार्ट
1: रीस

0: restart.
1: P9.6 Radio Maharani. Kuch Hatke.

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया।
1: नया नजरिया
2: विद आरजे पलक।
0: प्रिया जी, सोशल मीडिया पर किसी और की सक्सेस देखते ही कई लोग अपनी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स को उसी वक्त कैसे ब्रेक किया जा सकता है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: जी, बहुत अपने बहुत अच्छी बात कही है जो आज की डेट में बिल्कुल सब पे ये लागू होती है, और मैं तो कहूँ सिर्फ यंग पे नहीं, इनफैक्ट जो बच्चे हैं,
0: बिल्कुल
3: इनफैक्ट जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन पर भी ये बात कहीं ना कहीं लागू होने लग गई है
0: जी।
3: वो भी कंपेयर करने लगे हैं, हम नहीं किया, देखो ये कर पा रहे हैं। तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या अपने को डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो तो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर कोई कंपेयर जरूर कर रहा है और हम सब जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। पर उसी दौरान मुझे इस थॉट पैटर्न को रोकना है, ब्रेक करना है, स्लो करना है, जो भी है वो मुझे ही करना है
0: जी।
3: तो मेरा मानना ये है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपना जो भी सक्सेस है या व्हाटएवर है वो डाल रहा है, तो ये बात याद रखिएगा कि दुनिया में जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा, जिनकी हम बात करें, जो आए दिन अखबारों में है, न्यूज में है, मीडिया में है, जो खुद नहीं डालते लेकिन मीडिया डाल रही है, वो अपनी सक्सेस को कभी सोशल मीडिया पे खुद नहीं डालते।
0: बिल्कुल,
3: ये चीज आप खुद पे डाल कर देखिए कि हमें अपनी सक्सेस क्यों डालनी है, या हम कुछ भी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे क्यों डालना है।
0: बिल्कुल,
3: और आज की डेट में तो देखा गया है कि जो डाल रहा है, जो घूमने गया है व्यक्ति, अभी हाल ही में न्यूज आई कि व्यक्ति ने गया है, पूरी फैमिली की फोटो अपलोड की है और वहीं से उनके घर में चोरी हो गई, क्योंकि फेसबुक से या जो भी वो है प्लेटफॉर्म है, वहां से वो न्यूज़

0: कर सकता, वो मछली मैं तैर नहीं सकता, मैं मछली से रेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने फील्ड में क्यों नहीं अपलिफ्ट करूं अपने आप को, आगे बढ़ाऊं अपने आप को, इस तरह के थॉट पैटर्न भी तो हम ला सकते हैं। ये मेरे ही हाथ में है, और अगर हम चाहे कितने ही किसी के स्पीचेस सुन ले, लेकिन अल्टीमेटली उस पॉइंट पे मुझे अपने आप को ही मोटिवेट करना है, आपको ही वो थॉट पैटर्न देने हैं कि ये अगर मैं देख रहा हूँ तो इससे मुझे अपने आप को, अगर मैं उसे देख रहा हूँ तो मुझे अपने आप को चैप्टर देना है,
1: बिल्कुल,
0: कि मुझे भी आगे बढ़ना है। और जरूरी नहीं है कि मुझे आगे बढ़कर सेम प्लेटफॉर्म पे अपने आप को भी अपलोड करना है ताकि चार लोग देख सकें,
1: बिल्कुल,
0: नो नीड, ये जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो खुद अपलोड नहीं हो रहा है, उसे दुनिया अपलोड करती है,
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए अपने आप को अपलोड करने में उस पे में मत रहिए कि सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहा है, एनर्जी अपलोड कीजिए, मोटिवेशन अपलोड कीजिए, और फिर उसके बाद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो दुनिया आपको अपलोड करेगी।
2: कंपैरिजन ट्रैप कब मोटिवेशन से प्रेशर बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे उन थॉट्स की जो रात भर हमें सोने नहीं देते। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया।
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: ज्योति जी, कई लोग रात सोने जाते हैं लेकिन उनका माइंड पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन और व्हाट इफ वाले थॉट से भरा होता है। ऐसे वक्त में दिमाग को शांत करने का सबसे इफेक्टिव स्पिरिचुअल तरीका क्या हो सकता है?
2: एक्चुअल में देखा जाए तो इस प्रॉब्लम से निकलने का सलूशन ही मेडिटेशन है।
0: जी,
2: कि आप अगर मेडिटेशन का मतलब सिर्फ क्या है, मेंटल अटेंशन,
0: बिल्कुल
2: मन की जो विचारधारा है उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि आज की डेट में हमें सब लोग ये तो कहते हैं कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या सोचना चाहिए
0: बिल्कुल
2: ये कोई नहीं बताता है
0: जी।
2: कि हमें ऐसे समय पे क्या सोचना पड़े। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर भी, मेरे साथ कोई चीट किया है किसी ने या कोई ऐसी बात हुई है, तो उस कंडीशन में हम जबकि मेडिटेशन करते हैं जब, तो हम अपने आप को एक थॉट देते हैं कि जिसने मुझे चीट किया वो उसकी अपनी नेचर, मेरी नेचर क्या है, मुझे उसके हाथ की कठपुतली नहीं बनना है, मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और शायद कभी किसी समय का मेरा उसके साथ कोई हिसाब किताब रहा होगा। तो मेडिटेशन की ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको हम अपने माइंड में लेकर चलते हैं, लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट मेथड है वो है कि सुबह सुबह उठकर पहले आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दे, पॉजिटिव बात करें अपने लिए कि किसी के भी हाथ की आप कहीं कठपुतली तो नहीं बनते जा रहे।
0: बिल्कुल।
2: तो अपने लिए पहले खुद को चेक करना है कि मेरी खुशी किसी पे डिपेंड तो नहीं है, मेरी सक्सेस किसी व्यक्ति विशेष पे या किसी साधनों पे तो डिपेंडेबल नहीं है। अगर हम डिपेंड होके चल रहे हैं तो मेरी खुशी वो टेम्परेरी रहेगी, मेरी सक्सेस भी वो टेम्परेरी रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: और अगर हम इनर पावर से बहुत पावरफुल है, बहुत अपने आप को स्ट्रांग करके चल रहे हैं, तो हमें आगे सफलता मिलेगी। जैसे अगर मुझे ऊंचाई पर चढ़ना है, मेरे को आगे जाना है, लोगों ने क्या सोच रखा है वो उनकी सोच है, मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे सामने बहुत सारे बैरियर्स तो आएंगे।
0: बिल्कुल।
2: अगर मुझे एक अच्छा दौड़ने वाला बनना है तो बैरियर तो क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर हम बैरियर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वहां पर फिर हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो बैरियर को अपने आप में एक चैलेंज समझ के अगर चलते हैं और सुबह सुबह उठ करके अपने आप को ये कहें, मैं सदा सफल हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे सिर पे परमात्मा का हाथ है, मैं जो भी कार्य करता हूँ वो सफलता मिलती है उसमें, पहले खुद को ये थॉट देना है, तब हम लोगों के साथ वो चीज डील कर पाते हैं। अक्सर होता क्या है, हम बहुत पॉजिटिव होकर चलते हैं लेकिन लोग हमें नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। जैसे इसकी एक स्टोरी सुनाऊं तो एक बार एक संत थे और वो संत जब स्नान कर रहे थे पानी में, तो उनके हाथ में उन्होंने देखा एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है। उन्होंने उसको उठाया और उसको किनारे पर रखने के लिए ले जाने लगे तो बिच्छू ने उनको डंक मार दिया, फिर उनके हाथ से वो गिर गया, वो फिर उठाया उन्होंने, खाने के बाद फिर जो है वो वापस ले जा करके रखने लगे। तो बार बार ये प्रोसेस, उनके ऊपर जहर चढ़ रहा है। अब कुछ लोग जो बाहर खड़े थे वो लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बिच्छू आप इसके साथ क्यों आप उसको उठा रहे हैं, वो आपको बार बार डंक मार रहा है और आप पे बहुत ज्यादा जहर चढ़ रहा है, आप ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जो आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है उसके साथ, लेकिन फिर भी आप उसको क्यों उसको बार बार उठा रहे हैं। कहा मैं इसे बचाना चाहता हूँ। बोले लेकिन ये तो आपको मार रहा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वैसे दुनिया में लोग कहेंगे प्रैक्टिकल होना मुश्किल है, लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है।
0: बिल्कुल।
2: उन्होंने कहा कि ये बिच्छू है और इस प्रवृत्ति जो है वो डंक मारने की है, ये मरते मरते भी अपनी उस आदत को नहीं छोड़ रहा है, मरते मरते भी वो डंक मार रहा है। तो मैं एक संत हो करके मेरी प्रवृत्ति बचाने की है, तो क्या मैं मरने के डर से अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ दूं? माने वो बिच्छू एक जीव, वो भी अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा, उसे पता है मैं मर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है। और मैं एक संत हूँ, एक महात्मा हूँ, मेरी इतनी ऊंची, मैं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनता हूँ, तो क्या मैं मरने के डर से अपनी इस नेचर को छोड़ दूँ? तो ये भी चीज हमें बहुत कुछ सिखाती है।
0: बिल्कुल।
2: स्टोरीज हमें बहुत कुछ जीवन में अप्लाई करना सिखलाती है कि लोगों ने हमें कुछ भी नेगेटिव भी बोलेंगे, निगलेक्ट भी करेंगे, लेकिन मुझे अपनी सोच को, मुझे अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है जो दूसरों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो।
3: बिल्कुल।
2: और इसके लिए हमें थोड़ा सा किसी पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना या कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जरूर जिनसे आपको कुछ पॉजिटिव चीजें मिल सकें। ऐसे में आप टाइम देंगे तो आपको हर जगह पर हेल्प मिलेगी। और मेडिटेशन में तो आप 15 मिनट भी अगर अपने साथ पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देते हैं और परमात्मा से कुछ पल के लिए अपने मन की बातें करते हैं तो आपको वो बहुत बहुत हील करता है।
0: हम सब कभी ना कभी ऐसे थॉट्स का सामना जरूर करते हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलना भी मुमकिन है। ब्रेक के बाद आज का सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल सवाल लेकर लौटेंगे। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नया नजरिया ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया।
1: नया नजरिया
2: आरजे पलक।
0: प्रिया जी, अगर कोई पर्सन हर सिचुएशन में पहले नेगेटिव ही सोचता है, तो वो आज से ऐसी कौन सी सिंपल हैबिट्स शुरू करे जिससे धीरे धीरे उसकी थिंकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलने लगे?
3: तो बिल्कुल। तो फिर अगर मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं कहीं भी कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट फर्स्ट थॉट मेरा नेगेटिव होता है, उसके बाद धीरे धीरे अगर मैं अपने आप को रिकवर कर लेता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेक इट अ हैबिट कि मैं जब भी कुछ ऐसा मेरे साथ होने लगे कि थॉट आ रहा है, तो हम ये हमेशा याद रखें कि सब कुछ अच्छा है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा।
0: बिल्कुल।
3: ये चीज आप जितना लिखेंगे तो ये चीज प्रैक्टिकली आपके साथ होने भी लगेगा। ये होता ही है कि अगर आप 21 बार लिखते हैं दिन में, तो वो चीज आपके जहन में जाने लगती है, और जब वो जहन में जाती है, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट, नेचर, बिहेवियर एंड देन हैबिट के साथ साथ आपका डेस्टिनी में भी आने लगती है।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो ये लाइन आप जरूर लिखें कि सब कुछ अच्छा है और मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, तो आप वाकई में देखेंगे सब अच्छा हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपने 3 लाइन बोली है, तो एक कहानी मैं भी सुनाना चाहूंगी। तो एक बार बीरबल के साथ अकबर ने बात करी, तो अकबर जी ने कहा कि क्या ऐसी दुनिया में जो कि जब भी पढ़ी जाए तो अपने आप को हम सहज कर सके, या फिर जो भी सिचुएशन में उसे हम अपने आप को निकाल सके। अगर मैं बहुत खुश हूँ तो भी नॉर्मल हो जाऊं, या मैं बहुत दुखी हूँ तो भी मैं अपने आप को नॉर्मल कर सकूं, ऐसा कुछ। तो बीरबल ने उनके आगे लिख करके दिया कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो अगर ये लाइन हम सदा याद रखें कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो अगर नेगेटिव सीन में हूँ तो भी मुझे अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल।
3: और अगर मैं बहुत एक्साजुरेट फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा क्या कहें, ऑन क्लाउड्स या जो भी फील करता हूँ, तो तब भी मेरे पांव धरती पर आ जाएंगे, अगर ये लाइन याद रहे कि ये वक्त गुजर जाएगा।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो ये
0: है।
3: दूसरी बात हम अपने जहन में डालें कि ये जो चल रहा है ये सब गुजर रहा है, अगर अच्छा है तो गुजर रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से गुजारे, और अगर नेगेटिव है तो गुजर रहा है, अच्छा है, गुजर जाए। तो ये दूसरी लाइन हम ध्यान रखें। और तीसरा जो है कि मैं कहूँ, थोड़ा सा हम मेडिटेशन करना शुरू करें कि आसपास जितने भी लोग हैं उनको हम इस फीलिंग से देखें कि ये मेरा परिवार है। तो अपने परिवार से कई बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे चीजें तो होती हैं। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, हम 40s में हैं, आप 20s में हैं, तो हमारी कितनी बार मम्मी पापा से बहस हो जाती है, कई बार डांट पड़ जाती है। तो अगर ऊपर नीचे हो रहा है आसपास, तो ये मेरा परिवार ही है, और परिवार में अगर ऊपर नीचे होता है तो तोड़ा नहीं जाता है, उसको संभाला जाता है, उसे रिपेयर किया जाता है। तो चाहे जापानीज में बहुत अच्छा एक टर्म यूज किया जाता है, जिसमें कोई भी चीज जो टूट जाती है वो उसे फेंकते नहीं है, वो उसे सोने की जो कहें उसे चिना देते हैं, यानी उसे जॉइंट देते हैं, और उसके बाद उस चीज को जोड़ करके वो सदा के लिए सजा देते हैं कि ये मेरे बचपन का यादगार है या समथिंग है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप में जब भी कुछ होता है तो हम उसे मेडिटेशन, परमात्मा की याद, अच्छे थॉट्स या कुछ भी इस तरीके की भावना से उसे पुनः जोड़े, हम तोड़े नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पलक के साथ बहुत बुरा एक सीन हुआ जो मेरे सामने है, लेकिन उसको हम जीरो नहीं

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद. तो भाई देखिए, वीकेंड की मस्ती और इंडिपेंडेंस डे का हैंगओवर फाइनली अब उतर गया है. अब हम लोग आ गया ट्यूसडे में और देखिए आज ट्यूसडे का फ्रेश स्टार्ट तो देना बनता ही है ना, बिकॉज कल का दिन हमने बहुत ही मंडे ब्लूज के साथ बिताया. लेकिन आज तो देखिए बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा, यानी कि आज तो एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब पूरा वीक काम करेंगे तभी तो वीकेंड तक ना अपना सारा काम कम्प्लीट करके वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे. तो देखिए आज का दिन बहुत ही मजेदार रहने वाला है. और अब मैं आई हूँ यहाँ पर तो फरीदाबाद की अपडेट आपको देने वाली हूँ. ट्रैफिक, वेदर, बॉलीवुड इंटरेस्टिंग फैक्ट, साथ ही फिटनेस वाला फंडा के साथ आपको मिलेगा साइबर अलर्ट. तो बने रहिए यहाँ पर. तो वही अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, मसाला वाली चाय की गर्मा गर्म सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज गाने में बहुत ही बेहतरीन बजाती हूँ. तो ब्रेक के बाद

0: जब गाने इतने शानदार बज रहे हो ना तो मन नहीं करता बातें करने का। खैर देखिए, अगर बातें नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आज वेदर क्या कहता है। तो देखिए भाई, फर्क अगर मौसम की बात करो, आज का वेदर का मूड ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। कभी देखो क्लाउड्स आ सकते हैं, कभी बारिश हो सकती है और कभी आपको धूप नजर आ सकती है। और देखिए, जब मानसून आता है ना तो ये सरप्राइज तो आता ही है। वैसे अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो 34 डिग्री जाने वाला है। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 28 डिग्री है। और अगर मैं बात करूँ ना ह्यूमिडिटी की, तो आज आपको ह्यूमिडिटी भी मिलने वाली है अच्छी खासी। तो भाई पानी पीते रहिएगा, अपने साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिएगा, और जब भी बारिश अपने आप आ जाता है तो ट्रैफिक को भी थोड़ा सा अच्छे से डील कीजिएगा। और इसके साथ ही अब एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: 1, 2, 3

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, hamari daily diet mein nutrition balance maintain karna kyun zaruri hai? Nutrition aur food हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है. अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड

हाइड्रेशन एक कंप्लीट अमाउंट में मस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं। गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिलते हैं। गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं। एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर।

हाँ जी, कभी नोटिस किया है कि हम फेलियर से इतना ज्यादा डरते हैं कि कभी कभी ना ट्राई करना ही छोड़ देते हैं, पहले ही गिवअप करके बैठ जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेवर गिव अप डे। तो आज तारीख पर मैं तारीख लेकर आ गई हूँ, और आज की तारीख हमें ये बताती है कि कैलेंडर बोल रहा है कि नेवर गिव अप डे, यानी कि हर साल 18 अगस्त को नेवर गिव अप डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं इस डे के बारे में बताऊं आपको, तो ये डे उन लोगों के नाम है जो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी बड़ी कोई ना कोई सिचुएशन हो, कभी भी फेल नहीं होते, हर बार ट्राई करते हैं। और ऑनेस्टली अगर बात की जाए ना सक्सेस एंड फेलियर की, तो उनके बीच ना एक डिफरेंस है, और डिफरेंस पता है किसने गिव अप किया और किसने एक बार और ट्राई किया। तो देखिए, अगर आज आप गिव अप करने का सोच रहे हैं ना, तो बस एक बार ये सोच लीजिए कि लास्ट टाइम ट्राई कर लेता है, क्या पता बॉस तुक्का लग जाए। और इसी के साथ बस ये कहना चाहूंगी, स्लो प्रोग्रेस बिना एक प्रोग्रेस होता है, और कभी मत रुकना माय डियर लिसनर्स। और इसी के साथ हैप्पी नेवर गिव अप डे। और मंडे को सर्वाइव कर लिया है, तो अब ट्यूसडे को भी सर्वाइव कर लेंगे। और इसी के साथ गाने बहुत ही हसीन हैं, एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 FM, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स, मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखा दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

0: Watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com.
1: सलमान खान की कॉमेडीज, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए। अपने फोन या आईपैड से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।

गाने बहुत ही बेहतरीन बजाती और जब बात गानों की आए ना तो दिलेर मेहंदी को कैसे भूल सकते हैं। वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जुन इन द हाउस और बॉलीवुड बस लेकर आ गई हूँ। तो देखिए आज का बॉलीवुड बस हमें ये बताता है, आज हम हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसी आवाज का जिन्होंने गाने गाए हैं और उन गानों पर ना लोगों को बहुत नचाया तो आज हैप्पी वाला बर्थडे है दिलेर मेहंदी का। पंजाबी पॉप और भांगड़ा की मेन स्ट्रीम में से एक है और जब इनका नाम आता है ना तो दिमाग में एक ही चीज आती है, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन। हाँ, यू हर्ड इट राइट, आज हैप्पी वाला बर्थडे है उन्हीं सिंगर का जिन्होंने तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन गाना गाया है। और ऑनेस्टली ना ये सॉन्ग आज भी अपने हुक स्टेप के लिए जाना जाता है। तो देखिए हैप्पी वाला बर्थडे विश करना तो बनता है ना। रेडियो मॉर्निंग विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आप ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और अपने फैंस का दिल जीतते रहे और साथ ही सुनते रहिए अमेजिंग ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकते।
1: Hey yo, G-Funk.

रेडियो महारानी।

लॉटरी लग जाए, लेकिन हर बार लॉटरी नहीं लगती और आपको ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो चलिए फिर अब वक्त हो गया 9 to 5 से आगे निकलने का, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करने का। तो आज का मैं बिजनेस मंत्रा लेकर आ गई हूँ और आज का बिजनेस मंत्रा ना थोड़ा सा हटके है, और सबसे बड़ी बात ना इसमें कोई दुकान की जरूरत नहीं है। अगर आपको एनिमल पसंद है और आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो पेट सिटिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब बहुत सारे पेट पेरेंट्स ट्रेवल पर जाते हैं तो उन्हें ना अपने पेट्स के लिए हमेशा कोई ट्रस्टेड पर्सन चाहिए होता है, बिकॉज उनके पेट उनके लिए ना बच्चों की तरह होता है। तो भाई देखिए, आप भी ना अपने घर पर पेट बोर्डिंग या फिर पेट वॉकिंग या फिर पेट ऑनर के घर जाकर पेट केयर जैसे ऑप्शंस दे सकते हैं। तो सोचिए मत, स्टार्ट कर दीजिए। और इसे स्टार्ट करने के लिए ना किसी फैंसी ऑफिस की जरूरत भी नहीं होगी, बस ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने एरिया में एक स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ चाहिए, दैट्स इट। और बस करना क्या है, पहले 2 क्लाइंट्स रख लीजिए, उनका रेफरेंस लीजिए, नेटवर्क में फैला दीजिए। तो बस ये था आज का बिजनेस फंडा, जो कि बहुत ईजी है, जहाँ पर आपको खुद ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, अगर कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो इस बिजनेस के तरफ जा सकते हैं, और उसके साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो जी, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आज के सोशल स्यापा की। और आज का स्यापा ना वाकई कुछ हट गया। ये स्यापा देखने के बाद ना तो सीधा यही निकलेगा दिल्ली दिल वालों की है, और शायद इसीलिए ना दिल्ली की मेट्रो को लोगों ने अपना घर समझ लिया है, और घर इस तरह से समझा कि अपने गीले कपड़े ना मेट्रो में सुखा दिए। तो भाई देखिए, दिल्ली मेट्रो के एक कोच का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। यहाँ पर एक पैसेंजर ने अपने गीले कपड़े यानी कि अपना रिंग कोट कोच के ऊपर ग्रिल पर ही सुखा दिया और आराम से ना बैठ गया, फुर्सत से फोन चलाने लगा। जब ये वीडियो देखा ना सोशल मीडिया पर लोगों ने, तो भाई यूजर्स ने ना जमकर अपने तंज कसे हैं। कुछ लोगों कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर सिविक सेंस छोड़ो कॉमन सेंस नहीं है लोगों में। तो भाई देखिए, ऑनेस्टली अगर देखा जाए ना तो मानसून का सीजन है और मेट्रो में ट्रेवल करना है, तो घर जाने का वेट कौन ही करेगा। तो इन्होंने सोचा क्यों ना यहीं पर कपड़े सुखा दिए जाए। मेट्रो ऐसी किसी भी गतिविधि को अलाउ नहीं करता, ये चीज याद रखिएगा। अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं, आपके पास जो कपड़े हैं वो गीले हैं, तो प्लीज मत सुखाइएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने घर जाकर ही अपने कपड़े सुखाएं। तो देखिए भाई, सोशल स्यापा का आज मैं सवाल भी लेकर आई हूँ। मुझे जरूर बताएगा कि अगर आपके सामने कोई मेट्रो में इस तरह की गतिविधि करता है तो आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, पोलाइटली समझाएंगे उसे, और या फिर उसका वीडियो बना देंगे? तो पता है ना बताने के लिए कहाँ जाना है, फटाफट से जाइए वीडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज गाने में अक्सर बहुत ही अच्छे बताती हूँ। और एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, माय सेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। ओवर द 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज द सोशल मीडिया इज ग्रोइंग, आई कैन सी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं और क्रैश डाइट्स करते हैं, जो कि उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। जो दूसरे की बॉडी पर सूट कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है। हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए। एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है। लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है। और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

है मुंबई मेरी जान। अरे मुंबई को देखते तो क्या नजर आता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी, लोग भागते नजर आते हैं ना। लेकिन एक और चीज जो मुंबई को बनाती है खास, वो है मुंबई का वड़ा पाव। वड़ा पाव का नाम लेते ही ना खुशबू आ गई मुझे वड़ा पाव की। तो देखिए भाई, मुंबई ना वड़ा पाव के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। तो भाई देखिए, मुंबई के स्ट्रीट फूड लवर के लिए ना मैं मस्त सी अपडेट लेकर आ गई। और अपडेट ये है, मुंबई हैज मेड इट टू द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रीट फूड डेस्टिनेशन फॉर 2026। तो देखिए, अभी बात की थी मैंने वड़ा पाव की, तो मुंबई का जो स्ट्रीट फूड है ना वो अपने आप में ही एक नंबर ही। और इसीलिए टाइम आउट की रैंकिंग में मुंबई को 10th पोजीशन मिली है विद अराउंड 55% अप्रूवल रेटिंग। यानी कि ये बताता है कि मुंबई के जो लोग है ना वो बहुत ज्यादा चटोरे हैं। अब फिर बात की जाए वड़ा पाव की, भेलपुरी की, मुंबई के काउंटलेस स्ट्रीट फूड फ्लेवर्स ने ना इस सिटी को ग्लोबल लिस्ट में एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट दिया है। और सिर्फ यहाँ पर मुंबई की बात नहीं करेंगे, चलिए आपको जयपुर भी लेकर चलती हूँ। जयपुर और न्यू दिल्ली भी इस लिस्ट में है, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो अपना इंडिया है ना, यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो कैलोरीज के पीछे नहीं भागता, वो इमोशंस के पीछे भागता। और जब वो प्लेट पर सर्व होता है ना, फिर कैलोरीज नजर नहीं आती, फिर नजर आता है सिर्फ और सिर्फ स्वाद। तो भाई अगर आपने वड़ा पाव कभी ट्राई नहीं किया है, दिल्ली की चाट कभी ट्राई नहीं किया है, जयपुर की मिठाई कभी ट्राई नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जाइए अभी जाकर ट्राई कीजिए, लुफ्त उठाइए इन जायकों का। अगर आपने ये नहीं किया ना, जीवन में आपने कुछ नहीं किया। और इसमें से आपका क्या फेवरेट है बताइएगा मुझे। और पता है ना बताने के लिए कहाँ जा रहा है, तो आ जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, करेंगे वहाँ आपके साथ थोड़ी बहुत गुफ्तगू। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

नीतू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली भंग होगी।

देखो देखो वो आ गया। कौन आ गया? आ गया सोशल स्यापा। बिजनेस तो कर लिया लेकिन आज का सोशल स्यापा का क्या? अंजलि ऑन एयर आए और सोशल स्यापा ना लाए, ये कैसे हो सकता है? और देखो अगर मैं आज के सोशल स्यापा की बात करूँ तो सीधा इंटरनेट से उठकर आप तक पहुंच ही जाए। तो देखिए अगर आज के स्यापे की मैं बात करूँ तो ग्वालियर से आया आज का स्यापा, बहुत दूर से आया। अब इतनी दूर से आया तो कैसे आया होगा बाइक पर बैठकर? देखिए अगर बाइक की बात हो ही रही है तो ये बताइए कि एक बाइक पर कितने लोग सही लगते हैं बैठना? एक या दो, हार्डली। लेकिन हमने कितने लोगों को देखा? एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 लोग एक बाइक पर सवार होकर गेड़िया लगा रहे थे। अब बात गेड़ियों तक नहीं थी, धीरे धीरे खतरों के खिलाड़ी भी शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ शुरू कर दिया स्टंट करना। और जब ये वीडियो इंटरनेट पर आया ना तो सोशल मीडिया पे बहुत ही धमाल मची। और ये धमाल मचाने के लिए ना हमारी ट्रैफिक पुलिस ने इस बाइक का नंबर देखा ना, तो फिर क्या था, फिर हो गया मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट। और इस एक्ट के तहत 6,500 का चालान काट दिया गया है। तो भाई देखिए अगर आप भी वायरल होने के लिए किसी भी तरह का कोई भी स्टंट करना चाह रहे हैं ना तो इस मोटर व्हीकल एक्ट को जरूर याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं जब ये एक्ट लगता है ना तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, यहाँ पर आपके चाचा काम नहीं आते। यानी कि कहते हैं ना कि मेरी चाचा से बात कर लो, मेरे ताऊ जी से बात कर लो, मेरे अंकल से बात कर लो, आप जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है। तो यहाँ पर ना वो सारी चीजें काम नहीं आती। तो अगर आपको इस चालान से बचना है ना तो भाई इस तरह का कोई भी स्टंट मत कीजिएगा। सेफ्टी पहले, सोशल मीडिया बाद में, ये हमेशा याद रखिएगा। और ट्रैफिक रूल्स भी याद रखिएगा। और सारे एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो जी, तो देखिए अब वक्त आ गया है मनी खाली कराने का। और जब मैं पॉकेट मनी की बात करूँ ना, स्पेशली भाई की, तो आप समझ ही गए होंगे रक्षाबंधन की बात करी तो। देखिए रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन भाई की पॉकेट खाली कराते वक्त ना अपनी पॉकेट का ख्याल जरूर रखेगा, बिकॉज रक्षाबंधन पर गिफ्ट भेजना है, राखी ऑनलाइन ऑर्डर करनी है या फिर भाई बहन को सरप्राइज देना है। तो बस एक मिनट जरूर याद रखेगा, बिकॉज फेस्टिवल के टाइम में सकते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव। तो भाई साइबर क्रिमिनल्स फेक राखी ऑफर्स, गिफ्ट वाउचर्स, कैशबैक और डिलीवरी लिंक्स के नाम पर व्हाट्सएप और साथ ही मैसेज भी भेज सकते हैं, जहां पर लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी राखी गिफ्ट रेडी है, बस डिलीवरी चार्ज पे कीजिए। और यही गेम शुरू। तो आपको बताया ना आपको करना क्या, जब भी आपको ऑर्डर कर रहे हैं उस ऑर्डर को क्रॉस चेक जरूर कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि ऑथेंटिक सोर्स से है, वेबसाइट से जाकर ही ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। और अगर हो सके ना तो UPI से बचिएगा, कैश ऑन डिलीवरी कीजिएगा और अपना OTP बिना किसी को चेक किए हुए मत दीजिएगा। तो बस इस बार रक्षाबंधन का सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है, गिफ्ट लेने के चक्कर में अपना अकाउंट खाली मत कर दीजिएगा, अननोन लिंक्स पर क्लिक मत कीजिएगा, साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मत शेयर कीजिएगा। इसे साथ ही हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्रैक जो है खास आपके लिए मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: दो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर उड़ाए।

non, please.

0: हाँ जी, तो अब वक्त आ गया है डू यू नो से सीधा डिड यू नो पर आने का। और आज का डिड यू नो ना बहुत ही अमेजिंग है। देखिए मूवीज तो हर किसी ने देखी होगी, और अभी अगर मैं बात करूँ ना तो हर वीकेंड हम लोग प्लान करते हैं मूवी का। और कई लोग तो इतने मूवी पगलू होते हैं ना, उन्हें डेली मूवीज देखती है। और कई लोग तो ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं जो मूवी देख कर रो पड़ते हैं। तो आज का डिड यू नो खास उन्हीं लोगों के लिए है जो मूवीज देखकर इमोशनल तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं मूवीज देखकर। तो उन्हें ये वाली बात जरूर सुना देना जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक मूवीज देखते वक्त इमोशनल होना एम्पैथी और इमोशनल प्रोसेसिंग से कनेक्टेड हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जब हम किसी फिक्शनल कैरेक्टर का पेन या फिर हैप्पीनेस को फील करते हैं तो हम एक्चुअली उसकी सिचुएशन को समझने और इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही कारण है जब हम मूवी देखते हैं और वहाँ पर हीरो की सैड स्टोरी चल रही होती है ना, तो हम खुद भी वीक पड़ने लगते हैं और खुद उन इमोशंस को फील करके ना रोने लगते हैं। तो भाई यहाँ पर ना ये दिखा सकता है कि हम दूसरों के इमोशंस को ना बहुत डीपली फील करते हैं, तो एक अच्छा साइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो लोग नहीं रोते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ मूवीज में रोना ऑटोमेटिकली हाई इमोशनल इंटेलिजेंस प्रूव नहीं करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशंस को समझना, मैनेज करना और दूसरों की फीलिंग्स को रेस करना भी शामिल होता है। तो अगली बार जब थिएटर जाएं और आंसू टप टप गिरे ना और कोई आपका मजाक बनाए तो बता देना उनको कि कितना डीपली फील कर पाते हैं आप, और ये सुपर पावर सिर्फ आपके पास है। तो देखिए ये था आज का डिड यू नो, और इसी के साथ चलिए चलते हैं आगे। लेकिन पहले सुनते हैं ये म्यूजिक ट्रैक जो है खास आपके लिए।
1: कुड़ी मैनू कहंदी

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल से ट्रेनिंग हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

और बहुत सारी की है, लेकिन अब वक्त आ गया है दिमाग की बत्ती जलाने का, यानी कि आपके दिमाग को ना थोड़ा सा सरप्राइज करने का, सरप्राइज के साथ ना थोड़ा सा शॉक देने का। तो भाई देखिए फरीदाबाद वालों, अब आपको पता ही चल गया होगा कि मैं क्या लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ फरीदाबाद की पहेली। तो अगर मैं आज की पहेली की बात करूँ ना, तो आज की पहेली ना थोड़ी सी ट्रिकी है। अगर आप फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हो तो इजीली बता पाओगी। तो चलिए पहले पहेली ही पूछ लेते। मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ लोहे से जुड़ी चीजें बनने का काम कभी बहुत इम्पोर्टेंट रहा। मेरा नाम एक ब्रिटिश ऑफिसर से जुड़ा है और आज भी मेरे नाम से फरीदाबाद का एक जाना पहचाना एरिया है। बताओ मैं कौन हूँ। तो देखिए अगर आप फरीदाबाद को बहुत ही अच्छे से जानते हो और बहुत ही पुराने टाइम से जानते हैं ना, तो आपको इस पहेली का आंसर जरूर पता होगा। तो कहाँ जाना है, चलिए आ जाइए फटाफट से रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज हमें भेजिए। हम भी तो देखें कि आप आखिर फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हैं। लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: कुछ हटके।
1: अरे यार डैडी, आप बैक टू बैक कॉल कर रहे हो यार। मैं करता हूँ ना, बोला ना ड्राइव कर रहा हूँ।
2: अरे हो ही नहीं सकता।
3: अरे मत यार,
2: लिमिट में
3: नहीं।

ईश्वर, हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज़्यादा और ज़्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए दुआ देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

0: बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।
1: और भाई रामफल सुना दे, क्या हाल चाल?
2: बस बढ़िया यार, कुछ नहीं, 12वीं के पेपर में फेल हो गया। अच्छा। बार बस यहाँ बैठा था, टाइम पास कर रहा था और बीड़ी फूक रहा था।
1: सही है, बीड़ी लगा ले, टाइम पास हो जाएगा मेरा भी।
2: क्या करना है,
1: ला जल गई, ला मेरे को दे दे
2: यार, तू भी दिमाग खराब करता है, खरीद के पी लिया कर कभी।
1: अरे तो एक बीड़ी में गरीब हो जाएगा क्या तू, एक बीड़ी के पीछे मर रहा है।
2: अरे बीड़ी छोड़, उधर देख
1: भाई, वो अमीर घर की बड़ी लड़की है, तू डरा, देसी कमार तेरे काबू थोड़ी आएगी, तो सब ले रहा है।
2: हाँ, फौजी बॉय, बुरा देख दमाग का फेरा।
3: राम राम मैडम जी, कैसे हो?
4: आगे स्वागत,
2: जा ले लो। हाँ, फौजी बॉय, सॉरी, इट्स अ डॉग फाइट।

0: कितनी बार समझाया है कि वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में इतना मत खो जाओ कि खुद की जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी की वजह से हुआ है। तो भाई देखिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर 17 साल की एक लड़की सेल्फी लेते वक्त अपना बैलेंस खो बैठी और हाइट से गिरकर सीधा झाड़ियों में जा फंसी। और जब बात कर ही रहे हैं ना पहाड़ों की, तो आपको पता है पहाड़ों पर क्या मिलता है? पहाड़ों पर मिलती है सिर्फ रिवर। तो भाई यहाँ पर अब आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता था, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं हुई। यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से सेफली रेस्क्यू किया गया। तो यहाँ पर इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने का सिर्फ मोटिव इतना सा है कि सेल्फी लेने के लिए ना सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको सेल्फी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो सेल्फी मत लीजिए, सिंपल। और सेल्फी लेने के लिए यार बहुत सारे प्लेसेस हम जाके सेल्फी ले सकते हैं ना, अपनी लाइफ को इस तरह से डेंजर में डालकर सिर्फ और सिर्फ एक व्यू के लिए, दिस इज नॉट डन। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, साथ ही सुनते रहे रेडियो 89.6 FM मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: ओए, कल आए क्यों नहीं थे?
2: अरे भाई यार, घर पे बोला दोस्तों के साथ जाना है, तो बोलते यारी दोस्ती होनी चाहिए पर इतनी भी नहीं कि और कोई चीज इम्पोर्टेंट ही ना लगे।

0: ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, और अपने ऊपर कैसे ध्यान देते हैं? और उन्हें कौन समझाए?
1: अपनी लाइफ के पास ही तो जा रहा हूँ।

हेलो हेलो जी, तो माय डियर फरीदाबाद वालों, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी अपडेट लेकर आई हूँ। और ये अपडेट ना फरीदाबाद के फ्यूचर की पिक्चर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। सो हरियाणा गवर्नमेंट के प्लान्स के अकॉर्डिंग फरीदाबाद ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट में एक आइकॉनिक टावर डेवलप किया जाएगा, साथ ही NCR के साथ कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जाएगा। आइडिया सिंपल सा ये है कि फरीदाबाद को एक मॉडर्न अर्बन हब के रूप में डेवलप किया जाने के बारे में सोचा जा रहा है। यानी आने वाले टाइम में ना सिटी में बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बूस्ट मिल सकता है। तो ये हमारे फरीदाबाद के लिए तो एक अच्छी अपडेट है। और अब देखना ये होगा कि प्लान्स ग्राउंड पर कितने जल्दी आते हैं और कितनी जल्दी शेप लेते हैं, क्योंकि भाई अपने फरीदाबाद वालों को ना डेवलपमेंट के साथ एक और चीज चाहिए, वो है ट्रैफिक थोड़ा सा कम। तो ये थी आपके शहर की फ्रेश अपडेट, फरीदाबाद की खबर फरीदाबाद के रेडियो पर। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज आपको बताया ना गाने में अक्सर अच्छे बजाते

0: करो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

Venom, please.

One wine, please.

किसी को बुलाना कितना आसान है ना, मतलब अब तो खरीदा भी जा सकता है, पर क्या ऐसी दुनिया में तुम मुझे याद रखोगे हमेशा के लिए?

कोई पूछे जो कैसी है तू, कि मैं कह दूं गुलाबों सी है, कि तू कमरे में महके मेरे, कि तू छोड़े मुझे इस कदर, कि

हम आज से अब अलग हैं। मैंने तुम्हें भुला दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे भूल जाओ, ताकि जब हम दोबारा मिले तो अजनबी हो।

रेडियो महारानी।

0: हाँ जी, तो चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यानी कि वक्त हो गया है फरीदाबाद की पहेली जाने का। और देखिए आशना, मैंने एक ऐसी जगह की बात की थी जहाँ पर मैंने को हिंट दिया था। हिंट ये था कि ब्रिटिश के नाम पर है ये जगह, तो यहाँ पर ना मेरे को बहुत सारे आंसर आए, तो चलिए पहले आंसर सुनते हैं।
1: हेलो आरजे अंजलि, मैं संध्या, और आपने जो पहेली पूछी है उसका आंसर है नेहरू नगर, और बहुत ही प्यारी जगह है। मैं वहाँ गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है, और आई विश कि कभी आगे मेरा जाना हो पाए। थैंक यू।
0: कहना पड़ेगा संध्या जी, वाकई फरीदाबाद को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, और ये जगह एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग इस जगह को गेस कर पाएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल राइट गेस किया है। तो देखिए इसी तरह से करते रहिए फरीदाबाद को एक्सप्लोर, क्योंकि मैं आती रहूंगी इसी तरह की ब्रेन रोट पहेली लेकर आप सभी के लिए। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे, हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकेट्रिस्ट से मिले। डॉक्टर कॉलिंग।

0: जाके पूछ अपने बारे में।
1: बातें तो बहुत सारी हुई है, लेकिन अब बात आती है फिट फरीदाबाद की। तो भाई ये कैसे पीछे रह सकता है। आज मैं आपके लिए फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई, और फिटनेस वाला फंडा ना सिर्फ ये नहीं बताता हमें कि वर्कआउट कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, लेकिन ये फिटनेस वाला फंडा हमें ये भी बताता है कि जो हम डेली कंज्यूम करते हैं ना, आधे लोग तो समझ ही गए होंगे एनर्जी ड्रिंक्स की मैं बात कर रही हूँ, वो किस लिमिट तक करनी है। बिकॉज आज बात करने वाले हैं एनर्जी ड्रिंक्स की, क्योंकि जब भी हमें थकान लगती है, लो एनर्जी फील होती है, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत जाकर एनर्जी ड्रिंक उठा लेते हैं। और जो जैसे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना, ऐसे लगता है टुनटुन मौसी वाले लड्डू खा लिया, इतनी एनर्जी आ जाती है बॉडी में। तो पता है डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं इनका एक्सेसिव कंजप्शन किडनीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकता है। बिकॉज इसके अंदर ना कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हाई कैफीन हो गया, शुगर हो गया, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये सब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई जितने भी हेल्दी एडल्ट्स हैं ना, तो आपके लिए कभी कभार स्टैंडर्ड एनर्जी ड्रिंक काम कर सकती है, लेकिन डेली नहीं। और इसको डेली हैबिट मत बनाइए, खासकर अपने हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रेशन के लिए आपको पता है ना क्या करना है? हाइड्रेशन के लिए आपको अपनी स्मार्ट चॉइसेस ही ऑप्ट करनी है। जैसे कि नॉर्मल पानी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, या फिर आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, ग्लूकोज भी पी सकते हो। तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, लेकिन एनर्जी ड्रिंक से दूर रहिए। तो अगली बार जब भी एनर्जी ड्रिंक खोलने का मन करे ना, तो एक सेकंड जरूर सोचेगा और याद कर लीजिएगा मेरी आज की बात है। और इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है, बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

ले आ गया फिर तेरे दरवाजे के बरसात से बचने का और बहाना न मिला। बाहें तेरी घर सी लगी और इस दिल को कोई ठिकाना न मिला।

0: चले एक और तेल बस गया।
1: हेलो हेलो जी, तो देखिए भाई, बहुत सारी बातों की बात ना, अब फाइनली टाइम हो गया ये जानने का कि आज आखिर टिफिन में घर से आया क्या। और आज वाले टिफिन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज वाला टिफिन ना मैंने खुद ने बनाया है। आज मैं पास्ता लेकर आई हूँ, और जब मैं पास्ता लेकर आती हूँ ना तो मेरा मन ना गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जो मेरे को आती है बनानी और जिसे मैं शिद्दत के साथ बना सकती हूँ। खैर देखिए, मैंने तो बता दी कि मैं आज अपने टिफिन में क्या लेकर आई हूँ। अब वक्त है आपका, तो आपको पता है ना कहाँ जाना है। फटाफट से ये हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर जरूर अपने मैसेजेस भेजिएगा कि आज आपके टिफिन में क्या खास है, क्योंकि ना दिन को ना खास सिर्फ एक ही चीज बनाता है, वो है खाना। तो अगर खाना अच्छा होगा ना तो मूड अच्छा होगा, और अगर मूड अच्छा होगा ना तो आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। देखा कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा जरूरी है। और फिलहाल वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज जाऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, लेकिन तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 9.6 FM के साथ। लेकिन तब तक पता है ना आपको क्या करना है, आपको करना है ये गाना एंजॉय, और बने रहना है रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर।

बात अलग रिस्पेक्ट रख तो औकात अलग हीरो बनने का है अगर शौक पहले इंसान बन।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो ही। यहाँ बात करते हैं दोस्त का सेकंड सीजन स्टार्ट के हो चुका है, जो भी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो चुका है। बात करें यहाँ पे जैसलमेर का रॉयल सूर्यगढ़ पैलेस लोकेशन है यहाँ पे, और होस्ट फिर से करण जौहरी नजर आ रहे। ये सीजन एक मिस बू यानी कि बुरी खबर लाने वाला भी किस्सा जुड़ा होने वाला। बात करें यहाँ पे कंटेस्टेंट से किस हैं, मल्लिका शरावत से लेकर के पारुल गुलाटी, शालिनी पस्सी, अभिषेक मल्हान जैसे स्टार्स नजर आ रहे। ट्रस्ट वर्सेस डिसेप्शन, छुपे हुए ट्रेटर्स रात में एलिमिनेटर्स करते हैं, इनोसेंट्स को पहचानना होता है, मिशन स्टफ, सर्कल ऑफ शक। इन गेम्स के साथ अब देखते हैं इस बार कौन विनर होने वाला है द ट्रेटर्स का। ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और ट्रैक।

मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है, मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है, वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज में मन नहीं रखता, वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे, हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट से मिले।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी, और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई, दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा। मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

आपको यूं बोलो ना, तुम तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत सेंसिटिव होते हो, तो उन्हें ये वाली बात जरूर सुना देना जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक मूवीज देखते वक्त इमोशनल होना एम्पैथी और इमोशनल प्रोसेसिंग से कनेक्टेड हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जब हम किसी फिक्शनल कैरेक्टर का पेन या फिर हैप्पीनेस को फील करते हैं तो हम एक्चुअली उसकी सिचुएशन को समझने और इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मूवी देखते हैं और वहाँ पर हीरो की सैड स्टोरी चल रही होती है ना, तो हम खुद भी वीक पड़ने लगते हैं और खुद उन इमोशंस को फील करके ना रोने लगते हैं। तो भाई यहाँ पर ना ये दिखा सकता है कि हम दूसरों के इमोशंस को ना बहुत डीपली फील करते हैं, तो एक अच्छा साइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो लोग नहीं रोते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं होते हैं। कि मैं रोना ऑटोमेटिकली हाई इमोशनल इंटेलिजेंस प्रूव नहीं करता है। इमोशंस को समझना, मैनेज करना और दूसरों की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना भी शामिल होता है। तो अगली बार जब थिएटर जाएं और आंसू टप टप गिरे ना और कोई आपका मजाक बनाए, सो बता देना उनको कि कितना डीपली फील कर पाते हैं आप, और ये सुपर पावर सिर्फ आपके पास है। तो देखिए ये था आज का डिड यू नो, और इसी के साथ चलिए चलते हैं आगे। लेकिन पहले सुनते हैं ये म्यूजिक ट्रैक जो है खास आपके लिए। बेस्ट ऑफ अंजलि।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एक रात थी, कुछ दोस्त थे, आंखों में हजारों ख्वाब थे। किसी ने हंस कर कह दिया,

जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं सही फैसला चुनने का एक मौका देती है। तो अगली बार जब कोई कहे बस एक बार, तो खुद से कहना नहीं, मेरी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं, देखिए आए दिन टीवी पर कुछ छोटी प्लेटफॉर्म पर न्यू गेम्स न्यू टीवी शोज नजर आते हैं और इसी बीच इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार जिनका नाम है अनिल कपूर एक नया गेम शो होस्ट कर इंडिया के टॉप 1% जो ग्लोबली फेमस फॉर्मेट द क्लब का इंडियन वर्जन आ रहा है। 5 सितंबर 2026 को आने वाला है टीवी स्क्रीन और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों पर। फॉर्मेट होगा 100 कंटेस्टेंट्स और 13 सवाल जो लॉजिक कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होने वाले हैं। हर प्लेयर को शुरू में 1,00,000 मिलेगा, सही जवाब में पॉट बढ़ता है और 1 करोड़ तक ये विनिंग प्राइस जा सकता है। साथ ही साथ जो लोग शो देख रहे हैं यानी कि दर्शकों की अगर बात की जाए तो वो भी शो खेल सकते हैं, कुछ विनिंग प्राइज वो भी अपने घर लेकर के जा सकते हैं। आप देखते हैं अनिल का नया गेम शो जो आ रहा है कितना अच्छा प्यार मिलेगा। जहां पर एक और तो चलता आ रहा है कौन बनेगा करोड़पति, वो भी अगर देखा जाए तो देखिए यार सवालों से घिरा शो ये भी कुछ ऐसा ही रहने वाला। अब नया गेम शो ऐसा सवालों से घिरा क्या धमाल मचाता है देखना होगा। बाकी ऐसी भी चर्चा करता रहूंगा, उससे पहले एक और ट्रैक।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैं नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ एक यहाँ बात करते हैं इंडस्ट्री से एक बहुत बढ़िया स्टार शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बारे में, जो उनकी लाइफ और करियर पर बन रही डॉक्यूमेंट्री लगभग पूरी हो चुकी है, जहां इस कहानी में रजनीकांत साहब, चिरंजीवी, मोहन बाबू, आमिर और अनिल कपूर जैसे स्टार्स भी शामिल हैं। डायरेक्टर शशि रंजन इस कहानी को लेकर के आ रहे हैं। प्रोजेक्ट को पैन इंडिया नॉन फिक्शन फीचर के तौर पर रिलीज किया जाने वाला है। ये वही है जिन्होंने इससे पहले द रोशंस बनाई थी और द रोशंस को भी बहुत बढ़िया प्यार मिलता हुआ नजर आया। बात करें तो ऑस्कर विनिंग एडिटर संचारी दास इस कहानी को अपने प्रोडक्शन में लेकर के आ रहे हैं, तो और बढ़िया बात होने वाली है। और इसकी रिलीजिंग की बात की जाए तो भी फाइनल रिलीजिंग डेट तो अनाउंस नहीं की गई, लेकिन इस कहानी में आइकॉनिक नेगेटिव रोल्स, 1970 से 80 के हिट्स और बाद का पब्लिक लाइफ तक का पूरा दौर दिखाया जाने वाला रहेगा। इंतजार, बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

हुआ झुमका? वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहाँ सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी, और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर आपको ये बोले ना, तुम तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत सेंटी हो जाते हो मूवीज देखकर, तो उन्हें ये वाली बात जरूर सुना देना जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक मूवीज देखते वक्त इमोशनल होना एम्पैथी और इमोशनल प्रोसेसिंग से कनेक्टेड हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जब हम किसी फिक्शनल कैरेक्टर का पेन या फिर हैप्पीनेस को फील करते हैं तो हम एक्चुअली उसकी सिचुएशन को समझने और इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही रीजन है जब हम मूवी देखते हैं और वहाँ पर हीरो की सैड स्टोरी चल रही होती है ना, तो हम खुद भी वीक पड़ने लगते हैं और खुद उन इमोशंस को फील करके ना रोने लगते हैं। तो भाई यहाँ पर ना ये दिखा सकता है कि हम दूसरों के इमोशंस को ना बहुत डीपली फील करते हैं, तो एक अच्छा साइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो लोग नहीं रोते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ मूवीज में रोना ऑटोमेटिकली हाई इमोशनल इंटेलिजेंस प्रूव नहीं करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशंस को समझना, मैनेज करना और दूसरों की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना भी शामिल होता है। तो अगली बार जब थिएटर जाएं और आंसू टप टप गिरे ना और कोई आपका मजाक बनाए, सो बता देना उनको कि कितना डीपली फील कर पाते हैं आप, और ये सुपर पावर सिर्फ आपके पास है। तो देखिए ये था आज का डिड यू नो, और इसी के साथ चलिए चलते हैं आगे। लेकिन पहले सुनते हैं ये म्यूजिक ट्रैक जो है खास आपके लिए।

इसी के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं सिनेमा के कैलेंडर में आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ऐसे बहुत ही बढ़िया सिंगर और कह लीजिए एक्टर भी। आज बर्थडे है उस आवाज का जिसका नाम सुनते ही ढोल के बीच भांगड़ा और सेलिब्रेशन याद आ जाता है। 90s में इंडियन पॉप म्यूजिक को एक नया अंदाज देने वाले अपनी एनर्जेटिक वॉइस, सिग्नेचर टर्बन और इलेक्ट्रिफाइंग स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी साहब की बात कर रहा हूँ। जहाँ दलेर मेहंदी साहब इंडियन पॉप और पंजाबी म्यूजिक के सुपरस्टार की कैटेगरी में आते हैं और इनको लॉन्च करने में भी कुछ कहानियों में किरदार निभाते भी नजर आए, जहाँ हाल फिलहाल वेलकम की किश्त में भी नजर आए हैं अपने मजाकिया अंदाज में। इनसे जुड़े बहुत से किस्से कहानियां लेकर के आया हूँ, लेकिन ये सारे किस्से कहानियां बताने से पहले यानी कि इस पिटारे में क्या कुछ लाया हूँ ये सुनाने से पहले सुना देता हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: दो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डर आए फिर

वेरिफिकेशन करना है।

Venons, please.

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

सोचता है मेरे लिए मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करें दलेर मेहंदी साहब की। जब दलेर मेहंदी साहब ने म्यूजिक की दुनिया में अपनी पहचान पंजाबी फॉक और एनर्जेटिक पॉप सॉन्ग्स के जरिए बनाई। 95 में उनका डेब्यू एल्बम बोलो तारा रारा रिलीज हुआ और इसके टाइटल ट्रैक ने म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इस गाने की पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त थी कि दलेर मेहंदी ओवरनाइट पॉप सेंसेशन बन गए। उनकी पावरफुल आवाज और हाई एनर्जी परफॉर्मेंस ने पंजाबी पॉप को इंडिया के हर कोने तक पहुंचाने में बड़ा रोल प्ले किया। दलेर साहब के गाने पार्टी और सेलिब्रेशन के सिनोनिम बन गए। बोलो तारारा देन तुनक तुनक नाना नाना नारे हो जाएगी बल्ले बल्ले मेरा लौंग गवाचा जैसे गानों और बॉलीवुड में भी उनकी आवाज ने खूब धमाल मचा। रंग दे बसंती का रंग दे बसंती, दंगल का धाकड़ जैसे एनर्जेटिक ट्रैक्स ने उनकी पावरफुल सिंगिंग को नई जनरेशन तक पहुंचा। सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुनक तुनक तुन का म्यूजिक वीडियो अपने यूनिक विजुअल स्टाइल की वजह से इंटरनेट कल्चर में भी आइकॉनिक बन गया। ऐसी उनके बारे में और चर्चा करता रहूंगा, उससे पहले एक और ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक दे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

0: भेजा सरकार ने।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के।

0: सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीता, रेडियो महारानी 9.6 FM, जहाँ मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और OTT अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते के OTT कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है सीजन में मलिका शरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं, और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है, बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे होता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी OTT वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आवर्स।
1: कभी कभी ना दिन कितना भी बिजी हो, बस एक अच्छा गाना, एक छोटी सी स्माइल और दो मिनट की अच्छी बात पूरा मूड रिफ्रेश कर देती है। तो अगर आप बस इस वक्त ऑफिस में हैं, घर पर हैं या सफर में कहीं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी सही डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। मैं हूं आरजे पलक और शुरू हो चुका है द हैप्पी आवर्स सिर्फ 89.6 एफएम रेडियो महारानी पर। अगले 2 घंटे बातें होंगी ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, सोशल मीडिया के फन की, बॉलीवुड की फ्रेश अपडेट्स की और कुछ ऐसी स्टोरीज की जो शायद आपके चेहरे पर एक स्माइल जरूर ले आए। तो जहां भी हैं वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगले 2 घंटे गुड वाइब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी और स्माइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले गाने के साथ। गाना एंजॉय कीजिए और गाने के बाद मिलते हैं डिकोडेड में, जहां आज का एक और जेन जी वर्ड का मतलब डिकोड करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 एफएम रेडियो महारानी।

दोस्त है, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट

0: एक्सपर्ट्स।
1: आजकल मेरे ऑफिस के इंटर्न्स ने मुझे एक नया वर्ड सिखा दिया है। जब भी मैं उन्हें कोई काम असाइन करती हूँ ना, वो बस एक ही रिप्लाई देते हैं, क्लॉकेज और प्रॉपर एक्सेंट के साथ। भाई, पहले मुझे लगा कि ये मुझे टाइम देखने को क्यों बोलते हैं बार बार। फिर मैंने इनसे पूछ ही लिया कि तुम लोग मुझे इसका मतलब बताओगे, और उनका जवाब ये आया कि क्लॉकेट का मतलब है गॉट इट, यानी कि उन्होंने मेरी बात को नोट कर लिया है। और तब जाके मेरी भी जेन ज़ी डिक्शनरी थोड़ी अपडेट हुई। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो क्लॉकेट का मतलब है नोट कर दिया या फिर हो जाएगा। तो अगर आज कोई आपसे बोले क्लॉकेट तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि उसने आपकी बात को नोट कर लिया है, लेकिन अपने जेन ज़ी तरीके से। अब थोड़ा म्यूजिक हो जाए, गाना एंजॉय कीजिए, और गाने के बाद बात करेंगे उस ट्रेंड की जो आजकल हर दूसरी रील में सुनने को मिल रहा है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 FM रेडियो महारानी।

0: एयर पोल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पोल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें जो सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

मतलब ये ऑडियो इतनी स्पीड से वायरल हुआ है कि अब ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं। अनुपम खेर जी ने भी इस ऑडियो पर अपना वीडियो शेयर किया है और उसके बाद तो लोग और भी ज्यादा इस ट्रेंड को रिक्रिएट करने लगे। वैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक ऑडियो चल जाए ना तो फिर ट्रैवल रील हो, पेट रील हो, ऑफिस रील हो या बस बालकनी में खड़े होकर हवा खाने वाली रील, हर जगह वही ऑडियो सुनाई देता है और फिर एक दिन अचानक सब उस ऑडियो को छोड़कर किसी नए ट्रेंड के पीछे निकल जाते हैं। इसलिए अगर आप भी ये ऑडियो रोज सुन रहे हैं तो समझ जाइएगा आपका इंस्टाग्राम बिल्कुल अप टू डेट चल रहा है। चलिए अब इसी वाइब के साथ एक प्यारा सा गाना सुनते हैं, गाना एंजॉय कीजिए और गाने के बाद मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो बताएगी कि कभी कभी चार लोग क्या कहेंगे से ज्यादा जरूरी होता है खुद पर भरोसा करना। द हैप्पी आवर्स में बने रहिए 89.6 FM रेडियो महारानी के साथ।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: आवर्स।
1: आपने कभी नोटिस किया है, हम अपने लाइफ के डिसीजन से ज्यादा लोगों के रिएक्शंस इमेजिन करने में टाइम वेस्ट करते हैं। अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, ये पहन लिया तो, ये जॉब चूज कर ली तो, और फिर कल ही एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि चार लोग कितना भी सोच लें मुझसे ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। और सच बताऊं ये लाइन सुनते ही लगा कि प्रॉब्लम चार लोग नहीं है, प्रॉब्लम तो हम खुद ही हैं। क्योंकि सच बताऊं जितना हम ओवर थिंक करते हैं उतना तो शायद वो चार लोग भी हमारे बारे में नहीं सोचते। हम ही पूरी मूवी बना लेते हैं अपने दिमाग में कि वो ये बोलेगा, फिर उसका ये रिप्लाई आएगा, फिर सब मुझे जज करने लगेंगे, और रियलिटी में सामने वाला शायद दो मिनट बाद ही अपनी लाइफ में बिजी हो चुका होता है। इसलिए अगर ओवर थिंकिंग करनी ही है तो ये सोचिए कि मैं खुद क्या करना चाहता हूँ, ना कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि याद रखिए, लोग कुछ देर सोचते हैं लेकिन हम अगर उनकी सोच में ही उलझे रहें तो अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। और म्यूजिक को प्ले करते हैं, गाना एंजॉय कीजिए, और गाने के बाद मिलते हैं द पॉपकॉर्न अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 FM रेडियो महारानी।

हाँ जी, तो अब वक्त आ गया है डू यू नो से सीधा डिड यू नो पर आने का। और आज का डिड यू नो ना बहुत ही अमेजिंग है। देखिए मूवीज तो हर किसी ने देखी होगी, और अब भी अगर मैं बात करूँ ना तो हर वीकेंड हम लोग प्लान करते हैं मूवी का। और कई लोग तो इतने मूवी पगलू होते हैं ना, उन्हें डेली मूवीज देखती है। और कई लोग तो ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं जो मूवी देख कर रो पड़ते हैं। तो आज का डिड यू नो खास उन्हीं लोगों के लिए है जो मूवीज देख कर इमोशनल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर आपको ये बोले ना, तुम तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो मूवीज देखकर, तो उन्हें ये वाली बात जरूर सुना देना जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक मूवीज देखते वक्त इमोशनल होना एम्पैथी और इमोशनल प्रोसेसिंग से कनेक्टेड हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जब हम किसी फिक्शनल कैरेक्टर का पेन या फिर हैप्पीनेस को फील करते हैं तो हम एक्चुअली उसकी सिचुएशन को समझने और इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही रीजन है जब हम मूवी देखते हैं और वहाँ पर हीरो की सैड स्टोरी चल रही होती है ना, तो हम खुद भी वीक पड़ने लगते हैं और खुद उन इमोशंस को फील करके ना रोने लगते हैं। तो भाई यहाँ पर ना ये दिखा सकता है कि हम दूसरों के इमोशंस को ना बहुत डीपली फील करते हैं, तो एक अच्छा साइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो लोग नहीं रोते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ मूवीज में रोना ऑटोमेटिकली हाई इमोशनल इंटेलिजेंस प्रूव नहीं करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशंस को समझना, मैनेज करना और दूसरों की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना भी शामिल होता है। तो अगली बार जब टियर जाएं और आंसू टप गिरे ना, और कोई आपका मजाक डीपली फील कर पाते हैं आप, और ये सुपर पावर सिर्फ आपके पास है। तो देखिए ये था आज का डिड यू नो, और इसी के साथ चलिए चलते

कभी ऐसा हुआ है किसी फिल्म का टीजर भी ना आया हो और फिर भी पूरा इंटरनेट उसी की बात कर रहा हो? बस बॉलीवुड में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज की पॉपकॉर्न अपडेट में बात करते हैं लव एंड वॉर की। वैसे नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी तो बनती है, और जब डायरेक्टर हो संजय लीला भंसाली तो एक्सपेक्टेशंस वैसे ही डबल हो जाती हैं। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि फिल्म का फाइनल शूटिंग स्केड्यूल चल रहा है और मेकर्स जल्द ही शूट रैप अप करने की प्लानिंग में हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फिल्म में एक साथ नजर आएंगे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल। अभी टीजर रिलीज नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस ने अपना काम शुरू कर दिया है। कोई फर्स्ट लुक प्रिडिक्ट कर रहा है, कोई रणबीर और विक्की के फेस ऑफ की बात कर रहा है, और कोई भंसाली जी के ग्रैंड सेट्स को लेकर ऑलरेडी एक्साइटेड है। अच्छा, वैसे भंसाली जी की एक बात तो माननी पड़ेगी, उनकी फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, फील की जाती है। अब टीजर कब आएगा ये तो मेकर्स ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल बॉलीवुड की गॉसिप गलियों में लव एंड वॉर का नाम फुल ट्रेंड में। देखते हैं कि एक्साइटमेंट रिलीज तो

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: Lovebirds.
1: मैं एक कन्फेशन करूं, मेरे साथ ना रोज एक चीज बहुत होती है। कभी कभी मैं पूरे 15 मिनट आउटफिट चूज करने में लगा देती हूं और बाहर निकलते ही लगता है कि यार पहले वाला ही पहन लेना चाहिए था। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता होगा, आप लोग भी इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। हम अक्सर नए कपड़े ढूंढते रहते हैं, जबकि फेवरेट लुक तो वही होता है जिसमें हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। एक सिंपल व्हाइट शर्ट हो, फेवरेट जीन्स हो, या वो कुर्ता जिसे पहनकर मम्मी बोलती हैं आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो तुम, बस समझ लो वही आउटफिट विनर है भाई। फैशन का कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, ट्रेंड हर हफ्ते बदल जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। इसलिए अगली बार शॉपिंग पर जाओ तो सिर्फ ये मत सोचना कि ये ट्रेंड में है या नहीं, एक बार ये भी सोच लेना कि क्या शीशे में अगर मैं खुद को देखूं इस आउटफिट में। एंजॉय कीजिए, गाने के बाद मिलते हैं अपनी शहर की गलियों में। द हैप्पी आवर्स में बस।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: पेपर्स।
1: एक सवाल पूछूं, फरीदाबाद में शॉपिंग करनी हो और बजट भी ना बिगड़े तो सबसे पहला नाम दिमाग में किस मार्केट का आता है? मेरे दिमाग में तो सीधा NIT की एक नंबर मार्केट आती है। सच बताऊं, यहाँ की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, आप सिर्फ एक टी शर्ट लेने जाते हो और वापस आते आते दो शॉपिंग बैग होते हैं, क्योंकि है फुटवेयर है, बैग्स हैं, एक्सेसरीज हैं और बार्गेनिंग का तो अपना ही मजा है। इसीलिए सिर्फ फरीदाबाद के लोग ही नहीं, दिल्ली और आसपास के एरिया से भी लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। ये मार्केट बजट शॉपिंग और वैरायटी दोनों के लिए काफी पॉपुलर है, और शॉपिंग के बाद स्ट्रीट फूड की खुशबू आ जाए तो समझ लो आउटिंग कंप्लीट हो चुकी है आप सबकी। तो अब तो रक्षाबंधन भी आने वाला है, और अगर आप काफी टाइम से शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि पॉकेट भी खुश रहे और वार्डरोब भी, तो एक बार एक नंबर मार्केट का चक्कर जरूर लगाइएगा। चलिए अब ये बढ़िया सा गाना एंजॉय कीजिए, मिलते हैं गाने के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 FM रेडियो रानी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला के लिए बन रही है अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है, मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अब जमीन वापस लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर

0: अंजलि।
1: हाँ जी, तो अब वक्त आ गया है डू यू नो से सीधा डिड यू नो पर आने का। और आज का डिड यू नो ना बहुत ही अमेजिंग है। देखिए, मूवीज तो हर किसी ने देखी होगी, और अब भी अगर मैं बात करूँ ना तो हर वीकेंड हम लोग प्लान करते हैं मूवी का। और कई लोग तो इतने मूवी पगलू होते हैं ना, उन्हें डेली मूवीज देखते हैं, और कई लोग तो ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं जो मूवी देख कर रो पड़ते हैं। तो आज का डिड यू नो खास उन्हीं लोगों के लिए है जो मूवीज देख कर इमोशनल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर आपको ये बोले ना, तुम तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत सेंटी हो जाते हो मूवीज देखकर, तो उन्हें ये वाली बात जरूर सुना देना जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक मूवीज देखते वक्त इमोशनल होना एम्पैथी और इमोशनल प्रोसेसिंग से कनेक्टेड हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जब हम किसी फिक्शनल कैरेक्टर का पेन या फिर हैप्पीनेस को फील करते हैं, तो हम एक्चुअली उसकी सिचुएशन को समझने और इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही रीजन है जब हम मूवी देखते हैं और वहाँ पर हीरो की सैड स्टोरी चल रही होती है ना, तो हम खुद भी

0: life. Of course, but save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम.

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 9.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोरदा को क्यों था पौधों से प्यार।
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार।
1: अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है, बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं।

0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
1: गाने का गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरे की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: कार्निवल द लास्ट राइड किंग

हम सभी लोगों ने बचपन से एक चीज देखी होती है, सुनी भी होती है, और वो ये है कि बच्चे मन के सच्चे, एंड बच्चे सच में मन के सच्चे होते हैं। क्योंकि आज ही मेरे एक छोटी बच्ची से बात हुई। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी हाँ, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड बच्चों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इंसानों के अंदर, चाहे हम लोग कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, एक बच्चा हम सबके अंदर छुपा हुआ है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस बच्चे को बाहर आने दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखो पूरा रीजन है इसके पीछे। हम लोग जब छोटे थे, क्या हम लोग कुछ भी करने से पहले सोचते थे क्या? नहीं ना, मार्केट में खड़े होके डांस करना शुरू कर देते थे हम लोग, और रिलेटिव्स के घर में जा कुछ भी चीज उठा ले रहे हैं। हाँ, ऐसे होते थे जो शाये होते थे, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर की वो मस्ती बाहर आ ही जाती थी सबके सामने। अब मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि सड़क पर जाके डांस कर लो, बट स्टिल हम लोगों के अंदर का वो बच्चा बाहर आना चाहिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता है आरजे गौरव। एंड अगले 4 घंटों तक मैं आप सभी के साथ यहीं बना रहूंगा। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजने वाले हैं, बातें होने वाली है, हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हम लोग बात करेंगे जिम वाली, हम लोग बात करेंगे मौसम वाली। और मंगलवार की शाम है, गौरव मेरा नाम है, और इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो मुझसे बातें कर सकते हो। क्या मैं ही बताऊंगा क्या? देखो, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं या फिर आपको फरीदाबाद में किसी भी चीज़ से कोई परेशानी हो रही है।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

ये क्या है, हवा में कुछ वायरस है या फिर हमारे शरीर के अंदर कुछ वायरस घुस गया है क्योंकि खराब हो रही है, या फिर तो हमारे नोन में किसी की तबीयत खराब है या फिर हमारी खुद की तबीयत खराब है। और मोस्ट कॉमनली टाइफॉइड सबसे ज्यादा फैल रहा है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। शाम हो रही है, 5:20 हो रहे हैं मेरी स्टूडियो क्लॉक में। एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, ये मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, और ये ना पिछले 20 दिनों में देखने को मिली है। किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, किसी के पेट में दर्द है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, या फिर हो सकता है उनको लूज मोशन ना हो बट स्टिल दिन में या फिर एक दो दिन में एक बार लूज मोशन फील हो रहा है। और ये मैंने जब सवाल किया लोगों से इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोगों की रिप्लाई आई कि हाँ, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, फरीदाबाद में रहती हूँ। हम लोगों ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। और फिर मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कोई वायरस नहीं, डॉक्टर्स इस पे कह रहे हैं कि देखो वायरल फीवर चल रहा है। और ये अभी मौसम बदला है ना, जो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि सावन में बाहर का खाना मत खाइए तो वो बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे बैक्टीरियाज वो ग्रो करते हैं, और वो भी ग्रो नहीं, डबल स्पीड से ग्रो करते हैं। गुड बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर होते हैं, वो तो गट के अंदर है ना, तो उनको बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर खा सकते हैं बाहर से तो ज़रूर खाइए, अगर आपके डाइजेशन का इशू है तो। खुद से मत बनिएगा डॉक्टर, डॉक्टर से कंफर्म कीजिए कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और कोई भी बीमारी होती है ना, सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर इस गाने को कीजिए।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

सो टुडे देयर वाज अ हेडलाइन इन न्यूज़पेपर के हैदराबाद में कूड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। बट एक ये जो चीज है ना, कूड़ा सफाई नहीं हो रही है फरीदाबाद में, इसको सुनने के बाद ना दिल टूट सा जाता है कि हमारा फरीदाबाद कभी एक स्वच्छता के मामले में आगे रहता था और अब पीछे पीछे जाते जा रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वीडियोस भेज सकता हूँ। लाइक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा कि सफाई कर्मचारी की सफाई कर रहे हैं। बट काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो बन चुकी है हॉटस्पॉट। पता है आप लोगों को क्या होता है, मतलब उस जगह पर कूड़ा आपको रोज दिखाई देगा। मतलब वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा इसलिए नहीं क्योंकि आज डलेगा तो कल वो साफ हो जाएगा। सफाई कर्मचारी आएंगे, वो वहाँ से उठा देंगे। ट्रैक्टर आते हैं, जेसीबी आती है, वो वहाँ से कूड़ा साफ करके चले जाते हैं। मगर फिर नेक्स्ट डे वहाँ पर कूड़ा कौन डाल के जाता है? जी हाँ, आम जनता, हम लोग, हम ही हैं जो ये कूड़ा फैला रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, बट जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात यही है कि हमारे फरीदाबाद में अगर गंदगी फैल रही है तो उसके पीछे का रीज़न है कॉमन मैन, और कोई नहीं है। तो चलिए आप लोगों से बस इतने से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी को भी कूड़ा फेंकते हुए देखते हैं ना, तो उसको देखिए डांटिएगा मत, क्योंकि डांटने से कुछ होगा नहीं। उसको समझाइए कि भाई ऐसा मत कीजिए, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी को एंजॉय करते जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया गाने चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ। रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो,

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।

0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं, और बाइक भी जान बच जाए, कहीं ज्यादा है।
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

एक बात सच सच बताना, ये आपके तीन दिन कैसे गए? Like 15 एंड 16 एंड फ्राइडे की शाम, क्योंकि मेरे तो अच्छे नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए अच्छे। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है, बट जो मैं बात बोलना चाहता हूँ वो ये है कि

लेने का, क्योंकि फ्राइडे की शाम को ऐसा लग रहा था कि अब तो सैटरडे को पूरे दिन बारिश होगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सैटरडे को उमस दैट वॉज लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ संडे की, तो संडे को भी उमस यही बनी हुई थी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ गर्मी गर्मी गर्मी गर्मी गर्मी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ साथ एक बात बोलना चाहूँगा, देखो 15 अगस्त को जहाँ पर मेरी उम्मीद थी कि पतंगे बहुत सारी उड़ेगी, बहुत कम पतंगे उड़ी एंड मैं नहीं उड़ा पाया, क्योंकि ना तो मुझे चरखी मिली ना तो मुझे, हमारे सभी को पता है ना बहुत सारे केसेस आते हैं, और अभी एक वीडियो भी आई है, वायरल वीडियो है वैसे तो वो, बट इसमें अभी मैं कोई पुष्टि नहीं करना चाहता, बट उसमें जो बंदा बोल रहा है वो यही कह रहा है कि इस आदमी की गर्दन लाइक गर्दन पर चोट आई है की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, और वो मांझे की वजह से। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो आने वाले दिनों में भी छुट्टियाँ, प्लीज़ पतंग मत उड़ाइएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पंछियों को भी होता है तो इंसानों को भी होता है। और पतंग उड़ाना चाहता हूँ सर्दी से उड़ाई, वाला वाला धागा होता है ना वाइट वाला, जिससे हम लोग कन्ने बांधते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानिया एंजॉय कीजिए, क्योंकि गाने एक से बढ़कर एक चलेंगे। आदित्य रिखाड़ी की आवाज़ में आप सभी के लिए ये गाना पारो।

आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: की साइबर क्राइम से जा।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

क्या आपने कभी सोचा है कि आप एआई की मदद से अपनी चप्पल ढूंढ सकते हो, वो भी मंदिर के बाहर जो झुंड में पड़ी हुई चप्पल होती है उसमें से। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी आरजे गौरव इन द हाउस, आप सभी का स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। और जो मैं बात बोल रहा हूँ, जस्ट इमेजिन आप लोग मंदिर गए हैं, मंदिर के बाहर अपने चप्पल उतारे, जूते उतारे, और फिर उसके बाद जब आप मंदिर से वापस आए तो आपने देखा पूरा का पूरा झुंड पड़ा है, अंबार लगा पड़ा है पूरा का पूरा चप्पलों का और जूतों का। फिर उसमें से अपना जूता या फिर अपनी चप्पल ढूंढना इस लाइक क्या कहते हैं वो, सुई ढूंढना समुद्र। हाँ, सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। मगर यार ऐसा कर दिखाया है, कैसे? यह की मदद ली, चैट जीपीटी से पूछ लिया उसने, चैट जीपीटी को बोला मेरी चप्पल ढूंढ दो, और चैट जीपीटी ने ढूंढ भी निकाली। कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं हुआ गया कि एक आदमी ने चप्पलों का पूरा अंबार देखा, उसने बोला यार मेरी चप्पल तो इसमें मिलेगी नहीं। उसने फोटो खींच के डाली चैट जीपीटी में, बोला मेरी ढूंढ दो। चैट जीपीटी ने क्वेश्चन किया कि तेरी चप्पल दिखती कैसी थी, वो तो दिखा। तो इसने अपनी चप्पल का इमेज दे दिया और चैट जीपीटी ने अगले ही इमेज में सर्कल करके डाल दिया कि इस जगह पे देख ले, यहाँ पर तेरी चप्पल मिल जाएगी। सोचो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, इसे कहते हैं। और लोग कह रहे थे एआई जॉब खा लेगा। कौन सी जॉब खाएगा एआई? चप्पल तो ढूंढ के निकाल दी एआई ने। तो एआई को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे ना तो बहुत सारे फायदे हैं उसमें। तो बस यही कहना चाहूंगा, एआई का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है टेक्नोलॉजी से होता है स्कैम और लोग गलत फायदा उठाते हैं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये वाला मिक्स मैशअप गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बिल्कुल आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है। सपनों को डीकोड करने का वक्त आ चुका है। नाइटमेयर यानी कि नाइटमेयर तो वैसे खराब होता है, स्पूकी होता है, डरावना होता है, बट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सपने डीकोड करने का। रोज इस टाइम सपने डीकोड करते हैं हम लोग। और मैंने ये सोचा कि देखो काफी बार ऐसा होता है हम लोग सपने में उड़ रहे होते हैं या फिर कहीं से गिर रहे होते हैं, मगर अभी गिरने की बात नहीं करेंगे, अभी उड़ने की बात करेंगे। तो इसका मतलब हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग है कि आपकी करियर, बिजनेस या फिर जॉब में आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, तरक्की मिलने वाली। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। या फिर हो सकता है आपकी जितनी परेशानियां हैं उन सब से मुक्ति मिलने वाली है, कोई पुरानी प्रॉब्लम है वो खत्म होने वाली है, स्ट्रेस हो सकता है वो भी खत्म होने वाला है, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ सकता है। यार कितनी कमाल की बात है ना, सपने हमें बहुत कुछ बता जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को अपने सपने ही याद नहीं रहते। तो देखो अगर कल को आपको याद रहे कि आप सपने में उड़ रहे हो तो समझ जाना कुछ तो अच्छा होने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सकता है, या फिर हो सकता है आप किसी दुख से बाहर निकलने वाले हो। और इसका ना एक साइकोलॉजिकल मतलब भी होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है हम लोग माइंड में बहुत ज़्यादा घिचपिच चल रही है, ब्रेन फॉग है और स्ट्रेस है, तो काफ़ी बार ऐसा है कि हम लोगों को ना आज़ादी चाहिए चीज़ों से। नहीं वो वाली आज़ादी नहीं जो रील्स पर देखते हो, मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। काफ़ी बार अंदर से हम लोग बिल्कुल फ्री, हम लोग खुश रहना चाहते हैं मगर बंधन में बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है, आप सपने में उड़ते हुए देखते हो अपने आप को, तो मतलब यही है कि आप अपने आप को खुले में महसूस करना चाहते हो, आप बंधन से छूटना चाहते हो। तो करके देखिए एक बार। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कंट्रोल, आपका लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होता है ना जब, तो आप हवा में उड़ते हुए ही दिखोगे सपनों में। तो चलिए इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना, केड़े पासे जाइए सजना।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

पिछले 10 सालों से एक भी मैच नहीं हारी है अगेंस्ट श्रीलंका टीम इंडिया, एक मैच नहीं हारी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं कौन हूँ, आप सबको पता है मैं कौन हूँ। देखो, आरजे गौरव आप सभी के साथ है एंड इंडिया वर्सेस श्रीलंका ये मैचेस चल रहे हैं। और क्या हो गया, सस्पेंड हो गया मैच, क्यों? क्योंकि कुछ तो दिक्कत है ना, बारिश वारिश हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर बता दूं आपको, टीम इंडिया ने जितनी अच्छी बैटिंग पहली पारी में करी थी ना, सेकेंड पारी में पता नहीं क्या हो गया टीम इंडिया को, 193 पे टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। पहली बार बनाए थे 462 रन्स और अभी 372 रन का टारगेट दे दिया है श्रीलंका को, और कल का दिन बाकी है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो कल का दिन जो बचा है ना, तो इसमें या तो ऐसा होगा कि श्रीलंका की पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी, या फिर होगा कि ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका इंडिया को हरा दे वो भी एक ही दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। 372 रन का टारगेट दिया है जो कि एक बहुत ही बड़ा स्कोर है, चेज करना मुश्किल हो जाएगा। खैर अभी तो वक्त बताएगा कि ये मैच कैसे पलटता है, किस करवट लेता है। और इसी के साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, अगला टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है 27 अगस्त, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यशस्वी जायसवाल इज नॉट प्रिपेयर्ड। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है, बस मैं इसलिए आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ वो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: दुर्दा यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आप लोगों ने 15 अगस्त को बंटवारा 1947 देखा? आरजे गौरव देखा नहीं, देखी। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड जो मैं बात कर रहा हूँ, बंटवारा 1947 मूवी से उम्मीद बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा थी, मगर फिर उसके बाद लोगों की उम्मीदों पर पानी इस तरह फिरा जिस तरह से फरीदाबाद में जब ओल्ड अंडरपास में पानी फिरता है, वो तो जमा ही हो जाता है। खैर, और मैं बता दूँ आपको, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी ना, उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई फिल्म, तो मतलब साफ है कि फिल्म नहीं चल पाई, बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं रही। बट अभी वक्त है लोगों के पास, तो लोग देखने जा रहे थे, 15 तारीख को छुट्टी थी सबके पास। एंड अगर बात करें फिल्मों की, तो देखो फिल्म आने वाली है बढ़िया बढ़िया, अगले महीने मिर्ज़ापुर आने वाली है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जल्दी से पंचायत सीजन 5 भी आने वाला है। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो चार सीजन आए थे ना, इनके बाद अब इनके शॉर्ट्स ना इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे धीरे धीरे, तो वायरल हो रहे हैं मतलब कि ये लोग याद दिला रहे हैं, लोग अभी कहीं गए नहीं हैं, हम लोग वापस आने वाले हैं। तो बॉलीवुड की खबरें, या खबरें ना बोलूँ तो बॉलीवुड की अपडेट्स इतनी ही, और भी अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगी, मगर उसी के साथ साथ गाने भी चलते रहेंगे। तो रेडियो महारानी पर अगर आप लोगों को हमसे बातें करनी है तो नंबर है जी मेरा 1-9654, बस ये चार डिजिट याद कर लो, 9654-896-896। 89.6 इज आर फ्रिक्वेंसी, आप सुन रहे रेडियो महारानी, शो चल रहा है HR 896, और गाना चलेगा वो लम्हे। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

Cheers! पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: 89.6 FM कुछ छक्के
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके ले।

मार्केट में स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है ना, उतने ही ज्यादा स्कैम्स भी एडवांस होते जा रहे हैं। और कुछ स्कैम्स तो ऐसे हैं जो आपको पता भी चलेगा कि आप स्कैम होने वाले हो। रेडियो गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस एंड आप सभी का स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। पिछले 2 घंटे से तो मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट बज गए हैं 7:06 एंड यही 9 बजे तक मैं आप लोगों के साथ बैठा रहूँगा। एंड इसी के साथ साथ आपको बता दूँ, देखो स्कैम ना बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, एडवांस हो रही है। तो खुराफाती लोग हैं, दिमाग उनका ऐसे ही चलता है, अच्छी जगह भी नहीं चलाएंगे लोग दिमाग। तो होता क्या है, देखो आप लोगों के पास एक ना मैसेज आएगा इंस्टाग्राम पे, अगर आपकी प्राइवेट आईडी है तो वेल एंड गुड, प्राइवेट नहीं है तो आपके पास एक फॉलो आता है। फिर उसके बाद अगर आप मेल हैं तो आपके साथ ज़्यादा हो सकता है स्कैम। आपके पास एक मैसेज आएगा लड़की का, हाई और प्रोफाइल इज इंटरेस्टिंग, बस इतना सा बोलेगी। और फिर उसके बाद आप सोचोगे चलो बात कर लेते हैं, और अगर आपने उससे बात करी सामने वाली लड़की से, अब आपको पता भी नहीं कि वो लड़की है, अब कुछ होगा, फोटोज भी होंगी, बट आजकल AI से फोटो जनरेट करना कितना ईजी है कि नहीं। लाइक मेरी अगर फोटो को इस्तेमाल करें, उसके थोड़े से फीचर्स चेंज करेंगे, एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी। तो वो इस तरह से आपको मैसेज करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका ट्रस्ट गेन करेंगे, फिर उसके बाद आपके साथ हो जाएगा स्कैम। तो ऐसे स्कैम से बच कर रहिए, क्योंकि ये स्कैम नए टाइप के आए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, और किसी अननोन इंसान से बात करने के बाद 10 बार सोचिए, उनके भेजे हुए लिंक को क्लिक मत कीजिएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

क्या हाल है रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। शो चल रहा है 4896 एंड वक्त हो चुका है क्या हाल है। आप लोगों की क्या हाल है। फरीदाबाद में जब भी ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं और किसी से पूछ लो क्या हाल है तो वो यही बोलेगा कि बढ़िया है भाई, बस नीलम चौक से निकला था, बदरपुर बॉर्डर जा रहा था, बस अब सपना ही देख रहा हूँ क्योंकि नहीं पहुँच पाया हूँ अभी तक। और मथुरा रोड पे काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि गाड़ी चल नहीं रही, बस इंजन इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जब भी आप लोग ये सर्विस लेन पर आओगे ना तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। NID की बात करें तो NID 1 से NID 5 जाना था, बट गूगल मैप्स ने बोला भाई पैदल चले जा, गाड़ी से तो जल्दी पहुंच जाएगा। और अजरौंदा चौक पे ट्रैफिक में ऐसा फंसते हैं लोग कि ऐसा लगता है कि कभी कभार इसी को परमानेंट एड्रेस बना ले, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो क्राउन प्लाजा से आगे अजरौंदा चौक की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक, भले ही दिन हो भले ही शाम हो, ट्रैफिक का हाल सेम टू सेम होता है। और इसके साथ साथ सेक्टर 15 से निकलो सेक्टर 12 की तरफ तो पहुँचते पहुँचते ऐसा लगता है एक जनरेशन खत्म हो चुकी है। कभी कभार इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ओल्ड फरीदाबाद में ट्रैफिक को देख के कभी कभार यही लगता है कि पुराना तो सिर्फ फरीदाबाद है, ट्रैफिक तो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। और सूरजकुंड रोड पे ट्रैफिक आप लोगों ने देखा है, अपने अनंगपुर चौक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो सूरजकुंड रोड पे ट्रैफिक इतना है कि सूरजकुंड नहीं, सूरज डूबने तक पहुँचोगे आप लोग। मतलब एक बंद चौक था मैं मानता हूँ, बट स्टिल कोई नहीं, इग्नोर करो। नीलम चौक हो, बाड़ा चौक हो, जौंदा चौक हो, बड़कल हो, बट पूरा फरीदाबाद ट्रैफिक नहीं है, पूरे फरीदाबाद में ट्रैफिक नहीं है। पूरा का पूरा एक ट्रेजर हंट चल रहा है कि एक जगह से ट्रैफिक साफ होगा तो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली ट्रैफिक बढ़ जाएगा। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, और क्या हाल है आप लोगों के ये भी बता दीजिएगा। नंबर है हमारा 9654

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: ईशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, इसी तेरी लस्सी भी होगी। अपने घर से

0: चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आपके एरिया में बारिश हो रही है? नहीं नहीं, आप जहाँ पर भी है, जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं, क्या वहाँ पर बारिश? अब मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मौसम विभाग यही बोल रहा है कि हाँ बाहर बारिश हो रही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? शाम हो गई है, बारिश का इंतजार करते करते तो हम लोग परेशान हो गए हैं।

पिछले हफ्ते फ्राइडे को लास्ट बारिश हुई थी, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, चार दिन हो चुके हैं बारिश का नामो निशान नहीं है। कहीं कहीं पर छींटे पड़े थे, हल्के फुल्के छींटे पड़े थे, बट हमारे यहाँ पर कहीं छींटे नहीं पड़ रहे हैं। कल भी मौसम विभाग ये दिखा रहा था कि रात को 9 बजे बारिश हो रही है। मैंने चेक किया कि बाहर बारिश हो रही है, जब बाहर गया तो कहीं बारिश नहीं थी। बारिश तो छोड़ो, बादल का नामो निशान नहीं था दूर दूर तक। और आप सभी को बता दूं, अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन आप लोगों को बारिश वाले मिलने वाले, जैसे कि कल। कल 90% चांस है कि कल शाम होगी भीगी भीगी सी, क्योंकि बारिश के चांसेस 90% है। और अगर कल बारिश होती है तो आप सभी से मैं आज ही रिक्वेस्ट कर डालता हूँ कि कल वेल इन एडवांस प्रिपेयर होकर निकलिएगा। अगर आप लोग पब्लिक कन्वेंस से जाने की सोच रहे हैं तो अपने साथ छाता ज़रूर ले जाइएगा। अगर आप अपनी गाड़ी से जाने की सोच रहे हैं तो ऑफिस से टाइम से निकल जाइएगा, क्योंकि कल अगर बारिश हो गई तो फिर आपको पता ही है कि फरीदाबाद में कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है। और फरीदाबाद का ट्रैफिक, मैं तो बस ये बोलूँगा, कोई ना ही फंसे तो ही ज़्यादा बेटर है। और वैसे बता दूं आपको, ये हफ्ता थोड़ा सा आपको गीला गीला देखने को मिल सकता है। वेंसडे को बारिश 90% चांस, यानी कि कल 90% चांस, और वहीं पर थर्सडे को भी 70% बारिश के चांसेस है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर गाने चलने के चांसेस पूरे 100% पॉइंट 6 पर।

सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर फुल्ली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: I like it.
4: Awesome. East Punjab.

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: जनहित में जारी।

हम जिन्हें मिलने जा रहा है रेडियो का गौरव आरजे गौरव। आरजे गौरव की आवाज में अनाउंसमेंट मिलने जा रहा है। बता दूं आपको, 17 स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेस्टीजियस अर्जुना अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं और इनके नाम सामने आ गए हैं। मगर आपको बता दूं, बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है, मतलब मैं बोलूंगा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं मिल रहा किसी को भी। बता दूं आपको, पहला रियल गेम्स भी है प्रियंका गोस्वामी, मोहम्मद अजमल, ये तीनों एथलेटिक्स के खिलाड़ी। फिर उसके बाद नरेंद्र, जो हमारे खिलाड़ी बॉक्सिंग में जो जीत कर आए हैं। फिर विदित गुजराती एंड दिव्य देशमुख, दोनों चेस में जीत कर आए। फिर ट्रीसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद, दोनों बैडमिंटन में अभी हाल ही में अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। और इसी के साथ साथ शूटिंग में जीते हैं धनुष श्रीकांत। आप सभी को बता दूं, ये बधिर हैं, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो उन्हें सुनाई नहीं देता। और इसी के साथ साथ राजकुमार पाल एंड लाल रेम सियामी, इन दोनों हॉकी में अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से इनको अर्जुना अवार्ड मिल रहा है। और सुरजीत एंड पूजा को कबड्डी में अर्जुना अवार्ड मिल रहा है। तो वहीं पर रांच खंडेलवाल पैरा शूटिंग, एकता भयान पैरा एथलेटिक्स, अरविंद रोइंग में और अखिल शरण शूटिंग में। तो आप सभी को लग रहा होगा ना कि इस बार क्यों नहीं मिल रहा खेल रत्न अवार्ड। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, तो अभी कोई दावेदार सामने आ नहीं पा रहा है, इस वजह से किसी को भी इस साल खेल रत्न अवार्ड नहीं मिल रहा। तो कोई नहीं, इस साल नहीं मिल रहा तो अगले साल जरूर मिलेगा। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी को गानों का फुल डोज मिलता रहेगा। उन्हीं से फरीदाबाद के लड़के की आवाज़ में ये गाना रेडियो महारानी 9.6 पर।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक यूआई का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो
0: इरशाद।
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
0: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
0: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
0: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
0: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
0: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
0: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
0: बाय।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है ये?
3: तुम्बाड़ एक कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छिपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ के पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
2: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है, या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
2: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही,
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी। राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
3: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: बुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। साधन

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कभी कभी ऐसे गाने सुनते हैं ना तो फिर दिल खुश हो ही जाता है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। परदेसिया था इस गाने का नाम, परदेसिया है तेरे प्यार में। जब से मैं प्यार में नहीं हूँ, बट ये गाना काफी ज्यादा अच्छा था और प्यार भरी बातें और प्यार भरे गाने आने ही वाले हैं बस थोड़ी सी देर में। आरजे गीत विल बी हियर एनी टाइम। खिड़की के बाहर से झांकूंगा अगर मैं तो शायद मुझे दिख भी जाएगी। तो मेरा हो गया देखो यहाँ से जाने का। पहले आप सभी से हाथ जोड़ के, लिटरली मैं अभी हाथ जोड़ के बैठा हूँ। आप लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने हाथ में जोड़िएगा, आप गाड़ी पर कंसंट्रेट कीजिए और साथ ही साथ मेरी बात भी सुन लीजिएगा। और बात सिंपल सी है कि अगर आप लोग किसी और को कूड़ा फेंकते हुए देखते हैं तो उसको टोकिएगा मत। मतलब बोल सकते हो उसको कि भाई यार ये क्या कर रहे हो। अगर आप ऐसे बोलो ओए क्या कर रहा है, तो फिर वो गुस्से में आ जाएगा। उसको बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई ऐसे कैसे बात कर रहा है हमारे से बदतमीजी से। तो आप लोगों को बहुत प्यार से पूछना है, अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, आपका ही तो देश है, आप क्यों इसे खराब कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो गिल्ट आएगा, वो सोचेगा हाँ बात तो सही कहा है आपने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो किसी कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको समझाइए कि जो वो कर रहे हैं ना वो गलत है। क्योंकि ऐसे ही फरीदाबाद में आप सब देख रहे हैं हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। निगम वाले भी हड़ताल में है, जो काम कर रहे हैं वो रोज़ काम कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद वहाँ पर आके कोई ना कोई गंदगी फेंक के चले जाता है। बड़े बड़े बोर्ड्स लगे जिसमें लिखा है कि 50,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा, बट लोग नहीं मान रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है सोल्यूशन, बता कैसे सकते हैं। रेडियो महारानी पर आइए, वहीं आरजे गौरव भी मिल जाएगा। वहाँ पर एक मैसेज डालिए सोल्यूशन क्या हो सकता है इस कूड़े का, फरीदाबाद के कूड़े का, बताइएगा जरूर। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से 4 घंटे के लिए 5 से 9। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम HR 896।

0: बकवास है।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

रात थोड़ी सी गहरी हो गई है, शहर की आवाजें थोड़ी कम है और शायद इसी वक्त दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई देती है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके और इसके सबसे खूबसूरत हिस्से इश्क शायराना में हम आज की रात मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शायर से जिनका नाम लेते ही मोहब्बत, उदासी, इंतजार और एक अजीब सी बेबाकी सब एक साथ याद आने लगते हैं। नाम है अहमद फराज। फराज साहब ने बहुत ही कम उम्र में पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने उर्दू और पर्शियन में हायर स्टडीज की और अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत रेडियो के तौर पर की, यानी आवाज और अल्फाज से उनका रिश्ता सिर्फ एक शायर का नहीं था, वो आवाजों की दुनिया को समझने वाले इंसान भी थे। लेकिन फराज सिर्फ लव पोइट नहीं थे, उनके अंदर एक रिबेलियस आदमी भी था। शायद यही वजह है कि उनकी पोइट्री में मोहब्बत भी सिर्फ फूलों और चांद की कहानी नहीं, उसमें विरोध है, दर्द है, दूरी है, सवाल है और सबसे बड़ी बात अपनी बात कहने की हिम्मत है। और यही चीज मुझे फराज के सबसे करीब लगती है, क्योंकि हम भी तो आजकल दो ही तरह की जिंदगी जीते हैं, एक जो इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है और एक जो रात के इस वक्त अपने कमरे में अकेले बैठकर महसूस होती है। फराज उसी दूसरी जिंदगी के शायर हैं, वो उन फीलिंग्स के शायर हैं जिन्हें हम टाइप तो बहुत करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते। तो आज की रात थोड़ा वक्त फराज के नाम करते हैं, उनकी मोहब्बत को समझेंगे, उनकी नाराजगी को महसूस करेंगे और शायद उनकी कुछ बातों को भी, और शायद उनकी कुछ बातों में अपनी ही कोई कहानी मिल जाए। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां और अब इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड।

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 and कुछ हटके मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत शो है इश्क बाजियां और ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना. अभी हमने जाना फराज को, उस आदमी को जो सिर्फ मोहब्बत का शायर नहीं था बल्कि अपने समय में बेचैनी को भी अपनी पोएट्री में जगह देता था. लेकिन अब जरा उस फराज के पास चलते हैं जिसे दुनिया ने सिर्फ प्यार किया, द रोमांटिक फराज. और फराज की मोहब्बत की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनकी मोहब्बत बहुत परफेक्ट नहीं थी. उसमें आर्ग्यूमेंट्स है, इंतजार है, इनसिक्योरिटी है, दूरी है, ईगो है और कभी कभी वो एक्सेप्टेंस भी है कि शायद सामने वाला अब आपके साथ नहीं है, यानी बिल्कुल हमारी तरह. आज हम रिलेशनशिप होते हुए भी कितनी ही बार अकेले होते हैं. एक इंसान ऑनलाइन होता है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल. मैसेज पढ़ लिया जाता है, जवाब नहीं आता है. किसी का सीन पता होता है लेकिन लास्ट फीलिंग नहीं पता होती. और फराज शायद इसी सब ठीक है के पीछे वाली दरारों के पीछे के शायर है. उनकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले. अब जरा सोचिए कितना स्ट्रेंज है ना. हम वो लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद फोटोग्राफ्स डिलीट करते हैं, चैट आर्काइव करते हैं, अनफॉलो करते हैं, लेकिन मेमोरी को डिलीट करने का कोई बन नहीं होता. कभी कभी कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है लेकिन आपकी लैंग्वेज में रह जाता है, किसी गाने में, किसी परफ्यूम में, किसी सड़क के मोड़ पर, किसी कैफे की टेबल पर और सबसे ज्यादा रात के उन दो मिनटों में जब आप खुद से कहते हैं आई एम ओवर इट और दिल बहुत कामली कहता है रियली. फराज की पोइट्री की यही खूबसूरती है, वो आपको लेक्चर नहीं देती कि प्यार क्या है, वो बस आपकी फीलिंग को नाम दे देती है. और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी फराज पुराने नहीं लगते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, रिलेशनशिप के नाम बदल गए हैं, डेटिंग एप्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप्स आ गई हैं, लेकिन इंतजार अभी भी वही है. मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM. सेगमेंट है इश्क शायराना और अब है दिल को थोड़ा और राज में बनाने का वक्त. एक म्यूजिकल ब्रेक का स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कहानी अभी बाकी है.

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit करेगा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक दे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छट के मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, जहाँ आज रात इश्क शायराना में हम बात कर रहे हैं अहमद फराज की। अब तक हमने फराज को एक रोमांटिक पोइट की तरह देखा, लेकिन फराज की मोहब्बत सिर्फ आई मिस यू वाली मोहब्बत नहीं है, उनकी पोइट्री में एक बहुत मैच्योर रियलाइजेशन भी है कि कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं खोते, हम उसके साथ अपनी बनाई हुई पूरी दुनिया को खो देते हैं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल चीज ये नहीं होती कि वो इंसान चला गया, सबसे मुश्किल होता है उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे रिचुअल्स भी चले जाते हैं। वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस, वो बिना मतलब की कॉल्स, वो घर पहुंचकर बताना, वो किसी पर्टिकुलर जगह से गुजरते हुए अचानक उसका याद आ जाना, और फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आप उस इंसान को नहीं, उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ करता था। फराज की एक और बहुत खूबसूरत लाइन है, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। बस यही तो है, किसी के चले जाने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ एक पर्सन नहीं था, वो आपका रूटीन था, आपकी उम्मीद था, आपकी छोटी छोटी खुशियों का विटनेस था, और शायद इसीलिए कुछ लोग जाते जाते भी नहीं जाते हैं। उनका नाम हमारी कन्वर्सेशन में नहीं आता, लेकिन हमारी खामोशी में रह जाता है। और आज के टाइम में जहां हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करने के आदी हो चुके हैं, नया फोन, नई जॉब, नई कैफे, नई रिलेशनशिप, वहां फराज हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ याद दिलाते हैं, कुछ कनेक्शंस रिप्लेस नहीं होते, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। शायद क्लोजर का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ महसूस होना बंद हो जाए, क्लोजर शायद ये है कि एक दिन वही याद रह जाए और आपका दिल टूटे नहीं, बस थोड़ा सा आप मुस्कुरा दो। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, स्टे ट्यून्ड।

कैप्सूल। तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी। मैं आपके साथ हूँ इश्क़वाली गीत। आज की रात हमने अहमद फराज साहब को सिर्फ एक पोइट की तरह नहीं बल्कि एक फीलिंग की तरह समझने की कोशिश की, एक ऐसे पोइट की तरह जिसकी पोइट्री में लव भी है, रिबेलियन भी है और लोनलीनेस भी है, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। फराज की पोइट्री की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, वो आपको सिर्फ किसी और की याद नहीं दिलाते, कभी कभी वो आपको अपने खुद की याद दिलाते हैं, उस इंसान की जो कभी किसी के लिए बहुत खास हुआ करता था, उस रात की जब आपको लगा था कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा, उस गुड बाय की जिसे आपने सामने वाले से नहीं शायद खुद से कहा। फराज के यहाँ एक और खूबसूरत बात बार बार आती है, डिस्टेंस, आँख से दूर होना और दिल से उतर जाना दोनों एक बात नहीं है, और हमारे लिए इससे बड़ा रिलेशनशिप लेसन कुछ नहीं है। किसी को रोज देखना लव नहीं है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई आना लव नहीं है, हर फोटोग्राफ में साथ होना प्यार नहीं है। कभी कभी कोई इंसान हजारों माइल्स दूर होकर भी आपके सबसे करीब होता है, और कभी कभी कोई आपके सामने बैठा होता है लेकिन आप दोनों के बीच इतनी खामोशी होती है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया बीच में आ गई हो। वही फराज का मैजिक है, वो लव को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, वो उसकी कीमत भी जानते हैं, और शायद इसीलिए उनकी पोइट्री आज भी इतनी पर्सनल लगती है, क्योंकि हर किसी के पास एक फराज वाला रिश्ता है, कोई जिसे हमने चाहा, कोई जिसे हमने खोया, कोई जिसे हम आज भी याद करते हैं, या शायद कोई जिसे हम भूल जाने का नाटक करते हैं। तो अगर आज की रात फराज की किसी लाइन ने आपको किसी की याद दिलाई तो उसे तुरंत मैसेज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी को याद करना भी अपने आप में एक पूरा खत होता है जिसे भेजना जरूरी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, ये है रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां फराज साहब के नाम। अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि रेट्रो इश्क अभी बाकी है मेरे दोस्त।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

0: सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।

कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसी ही इश्क कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट

दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सर, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत जरूरी है. ये सब चीजें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

बाजियां। एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, जहाँ मैं बात करती हूँ उन कहानियों की जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपने पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहां शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बिट्रेयल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम को। छठ के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लफ्ज कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चार्लेट की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: लो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए।

non, please.

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमेंट करने पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी बटरफ्लाईज हो सकते हैं, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।
1: गुमसुम गुमसुम गुम

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit रहा है, वो आपकी body पे suit करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कंफर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्कबाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। थोड़ा सोचिए, अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी, ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना, यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए, जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप बांटते रहिए, और हाँ, दिल ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है, आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे बात पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, तो एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 20 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आप रुचि ना बैठे तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलु कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है। आने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवन नाम रूपी धन पर, ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके रंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि पात्र निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त हो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है नाम रूप लीला राम समान। उदासी तो निरंतर सच्चिदानंद।